0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া 6 বজাত হিন্দীত আৰু 6:05 ইংৰাজীত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नियम बदलने के साथ नियम बनाने की सोच भी बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं।
2: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लाल किले से स्वतंत्रता दिवस संबोधन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनमें विनिर्माण, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, तकनीक और नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्री अर्थव्यवस्था शामिल है। भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की और कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खडसे भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और प्रतिनिधि खेलों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। भारत की

में शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और प्रतिनिधि खेलों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। भारत की

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुधार कोई मजबूरी नहीं बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास है। कहा, सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई गईं। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों ने पर्यटन, एआई और सुविधाजनक यात्रा पर केंद्रित जयपुर घोषणा पत्र को स्वीकृति दी। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला चीन की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी से। और एम्स्टरडैम में पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज शाम भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नियम बदलने के साथ नियम बनाने की सोच भी बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं।
1: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लाल किला से दिए गए स्वतंत्रता दिवस संबोधन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनमें विनिर्माण, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, तकनीक और नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्री अर्थव्यवस्था शामिल हैं।
1: 15 अगस्त को मैंने लाल किले से सप्तधारा की, सप्त शक्तियों की बात की है और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो, गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल को 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की है। सिलीगुड़ी में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि घुसपैठ रोकने और देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर बाड़ लगाना जरूरी है।
2: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
0: गृहमंत्री ने अवैध प्रवासियों की पहचान, उन्हें हटाने और वापस भेजने की कार्रवाई जारी रखने की बात कही। श्री शाह ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, उसे पूर्वोत्तर की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। गृहमंत्री ने 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार ने सत्ता संभालने के 3 दिन के भीतर 3 नए आपराधिक कानून लागू कर अपना वादा पूरा किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और

0: और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। देहरादून में हुई भारत नेपाल संयुक्त कार्यसमूह की 14वीं बैठक में दोनों देशों ने आपसी सहयोग के विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
1: चर्चा के दौरान सीमा पार अपराधों और आपराधिक गतिविधियों से निपटने के उपायों, सीमावर्ती बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और प्रभावी ढंग से उपयोग करने, एकीकृत जांच चौकी, सड़क और रेल नेटवर्क पर बात हुई। दोनों पक्षों ने अतिक्रमण हटाने और सीमाओं के रखरखाव पर भी चर्चा की। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत और क्षमता विकास को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया और इन क्षेत्रों में सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने नेपाल में होने वाली संयुक्त कार्य समूह की अगली बैठक की तारीख पर भी सहमति जताई। समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
0: भारत की अध्यक्षता में जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी के साथ कल संपन्न हो गई। घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण अनुकूल पर्यटन, कौशल विकास और सुविधाजनक यात्रा जैसे क्षेत्रों पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
2: एक ऐसा पर्यटन का भविष्य जो अधिक रेजिलिएंट हो, जो इनोवेशंस को अपनाए और उसके साथ साथ में सस्टेनेबिलिटी की आधारशिला का निर्माण करे, क्योंकि भारत के लिए पर्यटन केवल मॉन्यूमेंट्स की विजिट तक सीमित नहीं, अभी तो हमारी संस्कृति को जानने, हमारी संस्कृति की पहचान कराने का और इस तरह का अनुभव कराने का एक सशक्त माध्यम भी है, जिसके माध्यम को हम उनको अपनी संस्कृति और सांस्कृतिक विविधता के साथ में जोड़ सकते हैं।
0: भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और खेल मंत्रियों की बैठक आज से शुरू होगी। ब्रिक्स युवा कार्य मंत्रियों की बैठक आज होगी, जबकि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक कल आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और प्रतिनिधि खेलों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार है और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए चीनी की कोई कमी नहीं है। उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि चीनी की कीमत पिछले कुछ हफ्तों में 48 रुपए से बढ़कर करीब 55 रुपए प्रति किलो हो गई है और सरकार लगातार कीमतों पर नजर रख रही है। कीमत पर नियंत्रण के लिए सरकार ने चीनी कारोबारियों पर 400 टन की भंडारण सीमा लगाई है। ये सीमा 1 अगस्त से 30 नवंबर तक लागू है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने भारत की सांस्कृतिक जड़ों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि संस्कृति देश को एकजुट करने वाली मजबूत कड़ी है। नई दिल्ली में कल अंतर हृदय कनेक्ट मल्हार कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने युवाओं, विशेष रूप से जेंजी से धैर्य और दायित्व के साथ व्यवस्था को बेहतर और मजबूत बनाने में योगदान देने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की प्रक्रिया के जरिए किया गया है। पुरस्कार पाने वाले शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से हैं। इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक शामिल हैं। ये कार्यक्रम दूरदर्शन और शिक्षा मंत्रालय के स्वयं प्रभा चैनल पर सीधा प्रसारित किया जाएगा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्हें संसद के उपाध्यक्ष कैसर कमाल ने पद की शपथ दिलाई। आलमगीर गुरुवार को राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल कर निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार ओली अहमद को हराया, जिन्हें 88 वोट मिले। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
3: भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंककर दूसरा स्थान हासिल किया। नीरज श्रीलंका के रमेश थरंगा पथिराज से केवल 9 सेंटीमीटर पीछे रहे। रमेश ने 88.14 मीटर तक भाला फेंककर पहला स्थान हासिल किया। उधर कुश्ती में भारत की महिला पहलवान काजल धोचक ने

0: वाकिया में अंडर 20 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। 76 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में काजल ने चीन की जिंगरू सन को 7-0 से हराया। इधर BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू शेंगशू और टेन निंग से होगा। क्वार्टर फाइनल में कल त्रिशा और गायत्री ने चीन की जिया यी फैन और झांग शू शान को 16-21, 21-15, 21-13 से हराया। इस जीत से त्रिशा और गायत्री ने प्रतियोगिता में भारत का एक पदक तय कर लिया है। उधर अमस्टल फैन में FIH महिला हॉकी विश्व कप के पहले मैच में भारतीय टीम को कल नीदरलैंड से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। और पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। पाकिस्तान पर 5-3 की शानदार जीत के बाद भारत ने पूल डी में दूसरा स्थान हासिल किया है।
1: मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की है। असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गरज के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य वर्तमान में अमेरिका के नियंत्रण में है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया है कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दक्षिण कैरोलिना में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोक दिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारे वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
2: धन्यवाद कनक। दिल्ली में स्वाइन फ्लू का संक्रमण, नवभारत टाइम्स और दैनिक जागरण की पहली खबर है। दैनिक जागरण लिखता है, राजधानी में एक दिन में स्वाइन फ्लू के 114 मरीज मिले। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, कुल मामले पिछले साल से 7 से 8 गुना बढ़े, केंद्र ने स्वाइन फ्लू पर दिल्ली के अस्पतालों को किया अलर्ट। हिन्दुस्तान ने लिखा है, फेफड़े हो रहे प्रभावित। चीनी की बढ़ती कीमत पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा 15 दिन की भंडारण सीमा तय करने पर जनसत्ता ने अपने संपादकीय में चीनी की कड़वाहट शीर्षक से लिखा है, भंडारण सीमा का उद्देश्य जमाखोरी रोकना है तो ये स्वागत योग्य, मगर सरकार को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि छोटे कारोबारियों पर नियमों का अनावश्यक बोझ न पड़े। लद्दाख में ग्रेविटी आधारित डायवर्जन से ग्लेशियर का पानी इगुफे सिंचाई नहर की ओर मोड़कर खेतों तक पहुंचाने की योजना दैनिक भास्कर के प्रथम पृष्ठ पर है। पत्र लिखता है, 9 करोड़ लीटर पानी अब भारत को सींचेगा। यमन के पास समुद्री लुटेरों द्वारा 2 जहाजों को अगवा किए जाने की खबर भी अखबारों में है। हिन्दुस्तान लिखता है, 22 भारतीय नाविकों को बंधक बनाया, विदेश मंत्रालय ने कहा सभी भारतीय सुरक्षित। सिविल जज भर्ती योग्यता नियमों में बदलाव की खबर दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी सहित कई अखबारों में है। नवभारत टाइम्स लिखता है, 1 साल की वकालत पर अब बन सकेंगे जज। राजस्थान पत्रिका ने विदेश कारोबार में मोदी सरकार का बड़ा कदम शीर्षक से लिखा है, अब डॉलर ही नहीं रुपए में भुगतान ले सकेंगे निर्यातक। पत्र लिखता है, इससे अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में रुपए का रुतबा बढ़ेगा। दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में दिल्ली में खाली सरकारी मकानों को किराए के घर में बदलने की योजना नवभारत टाइम्स के पहले पन्ने पर है। और अमर उजाला ने अपने अंतिम पृष्ठ पर बताया है, पाकिस्तान में दिल्ली की चाट और ढाका में खूब पसंद की जा रही बनारसी साड़ियां, न्यूयॉर्क से कराची तक भारतीय व्यंजनों का क्रेज।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुधार कोई मजबूरी नहीं बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास है। कहा, सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई गईं। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों ने पर्यटन, AI और सुविधाजनक यात्रा पर केंद्रित जयपुर घोषणा पत्र को स्वीकृति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब।

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া 12 বজাত হিন্দীত আৰু 12:05 ইংৰাজীত আৰু 12:10 পৰা সৈন্যবাহিনীৰ উদ্দেশ্যে প্ৰচাৰিত অনুষ্ঠান শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই ফৰহত নাজ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार केवल नियम नहीं बदल रही बल्कि नीतियों में भी व्यापक बदलाव कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
2: मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, मैंने ऐसे 7 सेक्टर्स की बात की जिन पर भारत का आज बहुत ज्यादा फोकस है और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो, गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है। ये रिफॉर्म्स हमारे लिए कंपल्सन नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा कन्विक्शन है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक होगी जबकि कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और प्रतिनिधि खेलों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने आगामी 57वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव इफ्फी की तैयारियों के लिए गठित समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। 57वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव इस वर्ष 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित होगा। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ मुरुगन ने युवा छात्रों, उभरते फिल्म निर्माताओं और भारतीय फिल्म उद्योग के गुमनाम नायकों के लिए अधिक अवसरों पर जोर दिया। सरकार ने आज 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफेनिरामाइन मैलेट और फिनाइल एफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट

0: चेतावनी देना अनिवार्य किया है ताकि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा है कि भारत अशांत समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की सशक्त समिति ने आज नई दिल्ली में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के गैर कृषि आजीविका घटक के अंतर्गत प्रस्तावों की समीक्षा की। बैठक का उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमों को मजबूत और व्यापक बनाना तथा स्वयं सहायता समूहों के छोटे उद्यमों को आगे बढ़ाकर विकासोन्मुख व्यवसायों में बदलने का मार्ग तैयार करना था। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास सचिव रोहित कंसल ने की। झारखंड के रामगढ़ जिले में मां छिन्नमस्तिका सीमेंट एंड स्टील पावर प्लांट में कल रात टरबाइन में तेज धमाके के बाद भीषण आग लग गई। इस हादसे में 3 इंजीनियरों की मौत हो गई जबकि 1 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अत्यधिक तापमान के कारण प्लांट का प्रोटेक्शन सिस्टम काम नहीं कर पाया, इससे टरबाइन की गति अचानक बढ़ गई और इसमें विस्फोट हो गया। प्लांट कर्मचारियों का आरोप है कि कंट्रोल रूम में बढ़ते तापमान और पर्याप्त कूलिंग व्यवस्था नहीं होने की जानकारी प्रबंधन को पहले से ही दी गई थी लेकिन समय पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी जिले के पोचमपल्ली मंडल में स्थित हेजलो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड में देर रात बड़ा विस्फोट हुआ। हादसे में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई जबकि 9 अन्य घायल हुए हैं। एक केमिकल रिएक्टर के अचानक फटने से औद्योगिक इकाई में जोरदार धमाका हुआ और भीषण आग लग गई। रिएक्टर फटने के कारणों की जांच की जा रही है। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज एम्स्टर्डम में भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. India has raised with Somalian authorities the issue of hijacking of 2 foreign-flagged commercial vessels with 22 Indian sailors on board. The vessels carrying 16 Indian seafarers on board MT Cebu and 6 Indian seafarers on board MV Lutuf were hijacked by armed pirates in separate incidents off Yemen and Somalia. In a social media post, the Indian High Commission in Kenya said all Indian seafarers are reportedly safe. Yesterday, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal, in response to a query during his bi-weekly media briefing, also addressed growing safety concerns regarding Indian mariners operating in volatile waters, reiterating New Delhi's commitment to prioritizing the welfare of its seafaring community. The government today imposed restrictions on the manufacturing, sale and distribution of all fixed-dose combinations, FDCs, containing chlorpheniramine, maleate and phenylerphine hydrochloride for children below 4 years of age. The Health Ministry, in a notification, mandated a clear warning that these medicines shall not be used in children below 4 years of age, in a significant step to safeguard the health and safety of young children. The government directed manufacturers to clearly display the warning, fixed dose combination shall not be used in children below 4 years of age on the label, package insert and promotional literature associated with these formulations. The government said that the use of such combinations may pose risks to children below 4 years of age and that safer alternatives are available. India will host the BRICS Youth Ministers Meeting and the BRICS Sports Ministers Meeting at Vishakhapatnam in Andhra Pradesh. The BRICS Youth Ministers Meeting will be held today, while the BRICS Sports Ministers Meeting will take place tomorrow. According to the Ministry of Youth Affairs and Sports, the Youth Ministers Meeting will focus on strengthening cooperation in youth development and empowerment, with discussions on education, skill development, entrepreneurship, well-being and sustainable development. A massive fire broke out last night following a powerful explosion in a turbine at Ma Chinnamastika Cement and Steel Power Plant in Hehel under the Barkakana OP area of Ramgarh district, Jharkhand. These engineers, 3 engineers, were killed in

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम एफ 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। अभी दिन के 12:10 हुए हैं। सैनिक भाइयों, मैं अमित बासकुटा आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के प्रसारण में।

सैनिक भाइयों, आपसे कुछ ही पल में हम प्रारंभ करेंगे आज के सुरीले गीतों का सुहाना सफर, पर उससे पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम 12:10 पर। 12:30 पर आप सुन पाएंगे आज का गीत। 12:38 पर एक और अनेक। 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार। 1:10 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम गुंजन।

एक बजकर 40 मिनट पर आप सुन पाएंगे प्रादेशिक संगीत कार्यक्रम। 2 बजे से आप बारी बारी से सुन पाएंगे अंग्रेजी और हिंदी में समाचार। और 2 बजकर 30 मिनट पर आप सुन पाएंगे आज के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम नजराना। और इसी के साथ आज के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3 बजे।

फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत अभी आपने सुना, श्रेया घोषाल और नकेश की आवाज में, भारत फिल्म से। सैनिक भाइयों, अब आइए सुनते हैं मैं हूं ना फिल्म से, के और वसुंधरा की आवाजों में यह गीत।

सनी भाई, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत, और अभी आपने सुना के और वसुंधरा की आवाज़ों में मैं हूं ना फिल्म से ये गीत। अब आइए सुनते हैं अभिजीत और सुनिधि चौहान की युगल आवाज़ों में गैंगस्टर फिल्म से ये गीत।

सैनिक भाइयों, राहत फ़तेह अली खान और श्रेया घोषाल की युगल आवाज़ों में अभी आपने सुना बॉडीगार्ड फिल्म से गीत, और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम एम 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर।

सैनिक भाइयों, आइए सुनते हैं आज का गीत कार्यक्रम। आज हमने लिया है मिस्टर आशिक फिल्म से ये गीत कुमार सानू की आवाज में।

हमेशा की तरह कल भी हमारे कार्यक्रमों का प्रसारण प्रारंभ होगा दोपहर 12:10 से। 12:12 पर फिल्म संगीत, 12:30 पर आज का गीत, 12:38 पर सबरंग, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार।

1:10 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम गीतमाला, 1:40 पर शीर्षक संगीत, 2 बजे से आप बारी बारी से सुन पाएंगे अंग्रेजी और हिंदी में समाचार। सैनिक भाइयों, 2:30 पर आप सुन पाएंगे हमारे प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम गीत अपना धुन पर आए, और इसी के साथ 2:03 समाप्त होगा हमारा कल का प्रसारण। तो ये थे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

यह आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिषपुर है। मीडियम एफ 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। अब आइए सुनते हैं एक और अनेक। सनी भाइयों, आज हम सुनाएंगे उदित नारायण और साथियों के गाए कुछ गीत। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का पहला गीत तेरे नाम फिल्म से, उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल आवाजों में। आइए सुनते हैं ये गीत।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक और अनेक। और अभी आपने सुना उदित नारायण और अलका याग्निक की युगल आवाजों में तेरे नाम फिल्म से ये गीत। अब आइए सुनते हैं राजा हिंदुस्तानी फिल्म से ये गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में।

0: 教会。
1: सनी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक और अनेक, और अभी आपने सुना उदित नारायण और अलका याग्निक की युगल आवाजों में राजा हिंदुस्तानी फिल्म से गीत। अब आइए सुनते हैं फिजा फिल्म से गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में।

सैनिक भाइयों, फिजा फिल्म से अभी आपने जो गीत सुना उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में, अब आइए सुनते हैं एक और अनेक कार्यक्रम का अंतिम गीत राज फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से आप हमारे कार्यक्रम आकाशवाणी के डिब्रूगढ़ केंद्र से भी सुन पाएंगे। मीडियम वेव 529.1 मीटर पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गुंजन, और आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का पहला गीत।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुंजन और अभी आपने सुना अनुराधा फेडवाल की आवाज में दिल है कि मानता नहीं फिल्म से ये गीत। अब आइए सुनते हैं फिल्म साजन से ये गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की युगल आवाजों में।

सैनिक भाइयों, अभी आपने सुना साजन फिल्म से गीत। अब आइए सुनते हैं बजरंगी भाईजान फिल्म से गीत, जुबिन नौटियाल की आवाज़ में।

सैनिक भाई, अभी आपने सुना यकीन फिल्म से गीत सुनिधि चौहान की आवाज़ में। और अब आइए सुनते हैं गुंजन कार्यक्रम का अंतिम गीत हीरो फिल्म से रेशमा की आवाज़ में।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम एफ 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। सैनिक भाइयों, अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। आज हम सुनाएंगे कुछ राजस्थानी गीत। इस कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं।

सैनिक भाई, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। और अभी आपने सुना समंदर खान, सत्तर खान और रामजन खान की आवाज़ों में केसरिया वन एल्बम से ये गीत। अब आइए सुनते हैं माता रानी भटियानी एल्बम से ये गीत।

0: The Indian duo went down to the 4th-seeded Chinese pair in straight games 18-21, 9-21 in the quarterfinals. With Vishnu P.S., Bhanu Pratap Singh, Akashvani News, Delhi.
1: And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Government imposes restrictions on manufacturing, sale and distribution of all fixed-dose combinations containing chlorpheniramine maleate and phenylephrine hydrochloride for children aged below 4 years. India to host BRICS Youth Ministers meeting at Vishakhapatnam in Andhra Pradesh this evening. India raises with Somalia issue of hijacking of 2 foreign flagged commercial vessels with 22 Indian sailors on board. US imposes 50% tariffs on $20 billion worth of Canadian products after trade talks with US fail. Canada says it will retaliate. IMD issues orange alert for very heavy rainfall over East Madhya Pradesh today. And in BWF Badminton World Championships, Indian women's doubles pair of Trisa Jolly and Gayatri Gopi Chand to be up against China's Liu Shengshu and Tan Ning in semi-finals this afternoon. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफेनिरामाइन मैलेट और फेनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। भारत आज शाम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत ने सोमालिया के साथ 2 विदेशी ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मुद्दा उठाया। इसमें 22 भारतीय नाविक सवार थे। अमेरिका ने व्यापार वार्ता विफल होने के बाद कनाडा के 20 अरब डॉलर मूल्य के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया। कनाडा ने भी समान स्तर के जवाबी टैरिफ लगाने की बात कही। पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला जोड़ी त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद आज सेमीफाइनल में चीन की लियू शेंगशु और टैन निंग से खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने आज 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफेनिरामाइन मैलेट और फेनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक रिपोर्ट।
3: स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है कि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। यह कदम छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। सरकार ने निर्माताओं को निर्देश दिया है कि इन दवाओं के लेबल, पैकेज में दिए गए निर्देशों और प्रचार सामग्री पर स्पष्ट रूप से चेतावनी लिखी जाए। सरकार ने कहा है कि ऐसे दवाओं के इस्तेमाल से 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम हो सकता है और इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। इस वर्ष जून में भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश भर में लोगों के इस्तेमाल के लिए 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगाई थी। शिवांग के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: वहीं सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए भी विज्ञापन की 12 मिनट की अधिकतम अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये फैसला केवल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन को राजपत्र में अधिसूचित किए जाने के साथ लागू हो गया है। इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन की अवधि से जुड़े प्रावधानों की समीक्षा करने की जरूरत महसूस की गई। मंत्रालय ने कहा कि भारत में टेलीविजन क्षेत्र विज्ञापनों पर काफी निर्भर है, चाहे कोई चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक होगी, जबकि कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खडसे भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज ब्रिक्स देशों के मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के निकट ऐतिहासिक थोटलकोंडा बौद्ध विरासत स्थल का दौरा किया। डॉक्टर मांडविया ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत थोटलकोंडा में पौधारोपण भी किया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि समय पर फैसले देने वाली न्याय व्यवस्था वैश्विक विश्वास बढ़ाती है, कारोबार सुगमता को मजबूत करती है और

0: किसी देश को निवेश तथा आर्थिक विकास के लिए अधिक भरोसेमंद बनाती है। नई दिल्ली में 11वें ब्रिक्स लीगल फोरम को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि मजबूत संस्थान विशेष रूप से प्रभावी न्याय व्यवस्था आर्थिक विकास की आधारशिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने लाइसेंस राज के दौरान उत्पादन को दंडित करने के अपने दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन किया है। अब उसके स्थान पर सरकारी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई योजना के माध्यम से इसे पुरस्कृत किया जाता। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2026 को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पिछली सरकारों की उस सोच की आलोचना की जिसमें जानबूझकर चीजों की कमी बनाए रखी जाती थी ताकि लोगों को सरकार पर निर्भर रखा जा सके। शासन की सोच में परिवर्तनकारी बदलाव का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने नकारात्मक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मॉडल की तुलना वर्तमान पीएलआई योजना से की।
1: जहां पहले प्रोडक्शन बढ़ाने पर पनिशमेंट मिलता था, वहीं आज हमारी सरकार प्रोडक्शन बढ़ाने पर इंसेंटिव दे रही है। पीएलआई स्कीम की सक्सेस दुनिया देख रही है। सिर्फ इस एक योजना की वजह से करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुआ है। 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोडक्शन और सेल्स हुई है। 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है और 14 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब बनी है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सप्तधारा पर विशेष ध्यान दे रही है। इसमें विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और हरित अर्थव्यवस्था सहित 7 प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं।
1: मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, मैंने ऐसे 7 सेक्टर्स की बात की जिन पर भारत का आज बहुत ज्यादा फोकस है और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो। गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है। ये रिफॉर्म्स हमारे लिए कंपल्सन नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा कन्विक्शन है।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी में पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़े सभी पक्षों के साथ बैठक की। इसमें उत्तर बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी पंकज सिंह की अध्यक्षता में एक मध्यस्थ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। ये समिति अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। पहला जहाज एमटी सीवू 20 अगस्त को यमन के तट के पास अदन की खाड़ी में अगवा किया गया। इसमें 16 भारतीय नाविक समेत 20 लोग सवार थे। दूसरा जहाज एमवी लुत्फ 17 अगस्त को सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास अगवा किया गया। इसमें 6 भारतीय नाविक समेत 10 लोग सवार थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा है कि भारत अशांत समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है।
2: 2 ships which are foreign flag.
3: 2 जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं। उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है।
2: We are in touch with the authorities that are concerned in this.
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कल से रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान श्री जयशंकर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग से जुड़ी 27वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका ने 20 अरब डॉलर मूल्य के कनाडा के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगा दिया है। ये टैरिफ आज लागू हो गए। अंतिम समय में तनाव कम करने के लिए हुई वार्ता विफल रहने के बाद कनाडा ने तत्काल जवाबी कार्रवाई करने की बात कही है। नए अमेरिकी टैरिफ से कनाडा के अमेरिका को होने वाले सालाना निर्यात का करीब 5% हिस्सा प्रभावित होगा। प्रभावित उत्पादों में हॉकी स्टिक और मेडिकल जांच में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी की स्टिक भी शामिल है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि कनाडा भी डॉलर के बदले डॉलर के आधार पर समान टैरिफ लगाएगा। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने वार्ता विफल होने के लिए वाशिंगटन को जिम्मेदार ठहराया। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आगामी 57वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव इफ्फी की तैयारियों के लिए गठित समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। इफ्फी इस वर्ष 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित होगा। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने युवा छात्रों,

0: उभरते फिल्म निर्माताओं और भारतीय फिल्म उद्योग के गुमनाम नायकों के लिए अधिक अवसरों पर जोर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी की कार्यसमिति के उस निर्णय की कड़ी निंदा करती है और स्पष्ट रूप से विरोध करती है, जिसमें पार्टी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के केवल पिछले दो छंद गाने का निर्णय लिया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने पंजाब सरकार को एक दुष्कर्म के मामले को दबाने के लिए नोटिस जारी किया है। आयोग ने एक शिकायत का संज्ञान लेते हुए आरोपों की जांच कराने को कहा है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी ने मामले को दबाने के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग की। रामगढ़ में देर रात एक सीमेंट और इस्पात पावर प्लांट में टरबाइन फटने के बाद भीषण आग लग गई। हादसे में 3 इंजीनियरों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। एक रिपोर्ट।
1: प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अत्यधिक तापमान के कारण प्लांट का प्रोटेक्शन सिस्टम फेल हो गया, जिससे टरबाइन ओवर स्पीड हो गया और विस्फोट हुआ। प्लांट कर्मचारियों का आरोप है कि कंट्रोल रूम में अत्यधिक तापमान और खराब कूलिंग व्यवस्था की जानकारी प्रबंधन को पहले ही दी गई थी, लेकिन समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की गई। विस्फोट और आग की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों और स्थानीय लोगों ने प्रभावित परिवारों को मुआवजा और नौकरी देने की मांग को लेकर आज रामगढ़ पतरातू मार्ग जाम कर दिया। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: तेलंगाना के यदाद्री भुवनगिरी जिले के पोचमपल्ली मंडल में स्थित हेजलो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड में देर रात बड़ा विस्फोट हुआ। हादसे में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि 9 अन्य घायल हुए हैं। रिएक्टर फटने के कारणों की जांच की जा रही है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मध्य प्रदेश के जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है।
2: मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय है, इसके चलते प्रदेश के पूर्वी हिस्से में पिछले 2 दिन से भारी बारिश हो रही है और कई जगह नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने आज सिवनी और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दतिया, भिंड, निवाड़ी, टीकमगढ़ समेत 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा कई अन्य जिलों में तेज बारिश और हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में सुधार है, लेकिन उत्तर और तटीय ओडिशा के कई इलाकों में अब भी पानी भरा हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई जिलों में करीब 14 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं।
3: उड़ीसा में बाढ़ का संकट अभी भी बना हुआ है और 7 जिलों में लगभग 14 लाख लोग इससे प्रभावित है। हालांकि मुख्य नदियां का जलस्तर घट रहा है, लेकिन कई गांव अभी भी पानी से घिरे हुए हैं। बालेश्वर में पानी में डूबे कई गांव के लोग अभी भी नाव पर निर्भर हैं और उन्होंने पके हुए भोजन, सूखे राशन और पीने का पानी की भारी कमी की शिकायत की है। अब तक इस बाढ़ में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच IMD ने आज से इसी महीने की 26 तारीख तक उड़ीसा में बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। वहीं बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत में अगले 2 से 3 दिन के दौरान इसी तरह की स्थिति रहने की स्थिति है। मौसम विभाग ने मछुआरों को सोमवार तक अरब सागर के पूर्व मध्य हिस्सों और बुधवार तक बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य हिस्सों में समुद्र में न जाने की सलाह दी है। भारतीय सेना ने हवाई निगरानी, त्वरित प्रतिक्रिया और युद्ध क्षेत्र तक पहुंच बढ़ाने के लिए सीमावर्ती राज्य पंजाब में अत्याधुनिक ड्रोन से लैस अपनी पहली बाज बटालियन का गठन किया है। ये बटालियन आकाश में निगरानी तंत्र और युद्ध क्षेत्र में दुश्मन पर बढ़त के रूप में काम करेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने प्रतिष्ठानों से आग्रह किया है कि वो EPF के दायरे से बाहर कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारी नामांकन अभियान 2026 का लाभ उठाएं। इस अभियान का उद्देश्य नियोक्ताओं के स्वैच्छिक अनुपालन को सुगम बनाना और पात्र श्रमिकों को भविष्य निधि, पेंशन और बीमा के लाभ प्रदान करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। और अब बात खेलों की। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज महिला डबल्स के सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू शेंगशू और टैन निंग से होगा। ये मुकाबला नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला जाएगा।
4: भारतीय जोड़ी ने कल चीन

0: की चौथी वरीयता प्राप्त जिया यी फेन और झांगशु जियान को 16-21, 21-15 और 21-13 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इस जीत के साथ त्रिशा और गायत्री ने इस चैंपियनशिप में भारत के लिए एक पदक पक्का कर लिया है। त्रिशा और गायत्री विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला युगल जोड़ी भी बन गई है। ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा पहली भारतीय जोड़ी थी जिन्होंने 15 साल पहले लंदन में कांस्य पदक जीतकर ये उपलब्धि हासिल की थी। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से भूपेंद्र सिंह।
1: वहीं एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज एम्स्टल फेन में भारत का सामना शाम 7:30 बजे से नीदरलैंड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफेनिलामाइन मैलेट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। भारत आज शाम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। अमेरिका ने व्यापार वार्ता विफल होने के बाद कनाडा के $20 अरब मूल्य के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया। पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: समाचार के बाद सैनिक भाइयों, आप सभी का हमारे इस प्रसारण में बहुत बहुत स्वागत है।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम एप 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और DRM फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। शनि भाइयों, अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम नजराना। इस कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज में अर्थ फिल्म से।

सनी भाई, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नजराना, और अभी आपने सुना इस कार्यक्रम का पहला गीत जगजीत सिंह की आवाज में अर्थ फिल्म से। अब आइए सुनते हैं अरिजीत सिंह, सईम भट्ट और मोहम्मद इरफान की आवाजों में मर्डर 2 फिल्म से ये गीत।

सैनिक भाइयों, नजराना कार्यक्रम का अंतिम गीत अभी आपने सुना, उमराव जान फिल्म से आशा भोसले की आवाज़ में। और इसी के साथ यह कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, और समाप्त होता है सैनिक भाइयों के लिए हमारा आज का प्रसारण। कल 12:10 पर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे अमित बांसकोटा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।

आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।

0: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। हमारा दिल बिना रुके दिन रात हमारे पूरे शरीर तक रक्त पहुंचाने का काम करता है। हम सो रहे हों, काम कर रहे हों, हंस रहे हों, तनाव में हों या रेडियो डॉक्टर सुन रहे हों, हमारा दिल लगातार हमारे लिए काम करता रहता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपने दिल के लिए उतना ही काम करते हैं जितना दिल हमारे लिए करता है। आज हम रेडियो डॉक्टर में यही जानने की कोशिश करेंगे। स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार। हम जानेंगे आज इस कार्यक्रम में कि हम अपने दिल की देखभाल ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, क्या करने की आवश्यकता है कि हमारा दिल लंबे समय तक हमारा साथ दे, यानी बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीजेस की, हृदय रोगों का रोकथाम कैसे किया जाए। और इस विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए जैसे हर बार हमारे साथ विशेषज्ञ होते हैं, हमारे आज के विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी हेड डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन एम्स न्यू दिल्ली से डॉक्टर राकेश यादव। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर राकेश यादव आकाशवाणी के एफएम रेनबो के स्टूडियो में आपका।
1: नमस्कार।
0: और डॉक्टर साहब से बहुत सारी बातें हम पहले भी अपने कार्यक्रमों में जानते रहे हैं, कैसे अपने हृदय को स्वस्थ रखें ये डॉक्टर साहब हमें बहुत सरल शब्दों में बताते हैं और आप हमें लिखते रहते हैं कि डॉक्टर साहब को जल्दी बुलाइए। तो लीजिए आज वो दिन आ गया है, डॉक्टर साहब हमारे साथ स्टूडियो में हैं, रेडियो डॉक्टर में हैं और आपकी जितनी परेशानियां हैं उनको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आप हम तक पहुंचेंगे ये आपको वादा करना है। लेकिन बता दें कि क्योंकि हृदय रोग के बारे में जब हम बात करते हैं तो आजकल काफी लोग डॉक्टर साहब चिंता में ये हैं कि बहुत जो युवा जो जनरेशन है या यूथ है वो भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। और आजकल हम बहुत न्यूज में देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं कि यंगस्टर्स हैं, जिम करते करते डेथ हो रही है, अचानक से कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। तो हमने सोचा इस कार्यक्रम को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाएं और अपने यूथ के पार्टिसिपेशन को भी इसमें, हम यूथ के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी इंक्लूड करने की कोशिश करें। तो आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है एक ऐसे ही यूथ रिप्रेजेंटेटिव को जो कि एक कॉर्पोरेट में काम करती हैं, उनका ऐसे ही बिजी शेड्यूल है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। तो हम सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं, हमारे साथ स्टूडियो में है परिधि मित्तल। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी रेडियो डॉक्टर में।
2: नमस्कार।
0: तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि किस तरह से यूथ को ये अफेक्ट कर रहा है ये भी जानेंगे। पहले थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, किस तरह का लाइफस्टाइल है आपका और क्या जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब से आज आप।
2: जरूर। मैं एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी में काम करती हूँ और मेरी तरह ऐसे बहुत सारे युवा होंगे जो आजकल मेरी ही तरह की लाइफस्टाइल जी रहे होंगे। काम चलते अक्सर हमने देखा है कि हमारी देर रात तक मीटिंग्स होती है, अलग अलग टाइम स्केड्यूल्स और टाइम जोन के साथ हमें काम करना पड़ता है, इसलिए सोने और उठने का कोई फिक्स स्केड्यूल नहीं रहता। कभी कभी ये भी होता है कि हम पूरे पूरे दिन लैपटॉप और अपने मोबाइल स्क्रीन के सामने हैं, बैठे हुए हैं, ब्रेकफास्ट भी टेबल पे ही कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं।

0: स्ट्रेस ले रहे हैं, डेडलाइंस पर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, तो कोई एक रिलैक्सेशन ही नहीं है। तो इसी टाइप का मुझे लगता है काफी यूथ का लाइफस्टाइल रहेगा। तो मेरे कुछ प्रश्न हैं जो मैं इस कार्यक्रम के थ्रू पूछना चाहूंगी डॉक्टर साहब से। बहुत खुश हूँ
1: जी, डॉक्टर साहब सामने बैठे हुए हैं, हमारे परिधि यहाँ हैं, और बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जो रेडियो के इस पार बैठे हैं या फोन से हमें सुन रहे हैं। हमारा ये कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी आप सुन रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो बिल्कुल जुड़ जाइए हमारे साथ। अगर आपके मन में भी प्रश्न है जिस तरह से परिधि के मन में प्रश्न है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फोन लाइन खुल चुकी है, व्हाट्सएप का भी मैसेज बॉक्स है, और आपकी तरफ से कुछ प्रश्न मेरे भी होंगे जो मैं पूछना चाहूंगी डॉक्टर साहब से। तो नोट कर लीजिए हमारे फोन नंबर्स 2342108023421082, और अगर आप दिल्ली से बाहर से हमें कॉल लगाना चाहते हैं तो 011 जरूर लगाइए। व्हाट्सएप पर लिखना चाहते हैं तो 9868107070 पर हमें लिख सकते हैं। एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब, पहले मैं ये आपसे जानना चाहूंगी, जो हमारा विषय है आज, हम दिल की बात करना चाहते हैं, कौन कौन सी आम तौर पर बीमारियां जो है होती हैं हृदय संबंधी?
2: देखिए, हृदय में बहुत तरह की बीमारियां होती हैं। जब आप जन्म लेते हैं तो आपके वॉल्व ठीक से नहीं डेवलप होते, आपके हार्ट में छेद होते हैं, उन्हें हम कंजेनाइटल हार्ट डिजीज कहते हैं
1: जी।
2: फिर जब आप युवा होते हैं तो आपके इन्फेक्शन हो सकता है, आपके वॉल्व खराब हो सकते हैं, उनको हम रूमेटिक हार्ट डिजीज कहते हैं। ये वॉल्व खराब होना आपके बचपन से भी हो सकता है, इन्फेक्शन से भी हो सकता है। फिर जैसे जैसे आप बढ़ते हैं आपकी मसल में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके कंडक्शन सिस्टम में, इसे नहीं कहते आपकी हार्ट बीट कम हो गई या हार्ट बीट बढ़ गई, आपके आर्टरीज जो होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, उससे हार्ट अटैक हो सकता है। कभी कभी माना जाता है कुछ वायरल फीवर हुए जिससे हार्ट की मसल वीक हो गई, हार्ट के ऊपर एक थिक पेरिकार्डियम होता है, उसकी भी बीमारी हो सकती है। तो बहुत तरह की बीमारियां हार्ट की होती हैं, और हार्ट की बीमारियों के साथ साथ जो ब्लड वेसल्स बाहर जाती हैं उनकी भी बहुत बीमारियां होती हैं। तो एक लंबी लिस्ट है इसमें, कैंसर भी हार्ट में हो सकता है।
1: अच्छा,
2: बहुत मेलिग्नेंसी। तो हार्ट की बीमारियां भिन्न भिन्न तरह की हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है जिससे हार्ट अटैक पड़ता है, जो रूमेटिक हार्ट डिजीज है जिससे वॉल्व खराब हो जाते हैं, जो कंडक्शन सिस्टम डिजीज है जिससे वॉल्व हार्ट बीट कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो ये तीन ग्रुप सबसे कॉमन है हृदय रोगों को लेके।
1: लेकिन हम हर विषय पर बात कर सकते हैं अगर आपके कोई प्रश्न है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को उसके बारे में जानकारी देना चाहते हैं हम, तो हम चाहेंगे कि हम बहुत सी आम बातें आज इस कार्यक्रम में शामिल करें, क्योंकि अवेयरनेस इज द की। अगर हमें जानकारी होगी कि किस तरह से इसको पहचाना जाए, किस तरह से पहुंचा जाए, क्योंकि इसमें यह भी कहा जाता है डॉक्टर साहब कि एक गोल्डन रूल है कि जितना जल्दी इसमें एड मिल जाती है उतना इसमें बचने के चांसेस होते हैं। तो हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आप अपने प्रश्न हम जरूर पहुंचाएं फोन के माध्यम से या लिख कर, जैसा भी आपको कन्वीनियंट हो आप जरूर करें। हम यहां पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, लौट कर आएंगे, आपके प्रश्नों का इंतजार कर रहे हैं हम।

0: आप ही कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में, और बिल्कुल दिल तो चाहता है, बहुत सारी चीजें चाहता है, लेकिन सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमारा दिल स्वस्थ रहे, क्योंकि वो स्वस्थ रहेगा तो हम हर चीज को एंजॉय कर सकते हैं बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हेलो
1: जी नमस्कार।
0: जी नमस्कार,
1: गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
0: जी गौतम साहब नमस्कार,
1: मेरा पूछना है कि आयुर्वेद में कहा गया है कि जो खट्टे पदार्थ है वो दिल के लिए हानिकारक है, क्या एलोपैथ में भी ऐसा माना जाता है या मिथक है? दूसरा एक बीमारी है पैल्पिटेशन, दिल घबराना, क्या ये एक डिसऑर्डर है या एक कंडीशन है? कृपया विस्तार से बताएं।
2: देखिए खट्टे पदार्थ, किस टाइप के खट्टे पदार्थ की बात कर रहे हैं? जैसे आप नींबू की बात कर रहे हैं, जैसे आप मौसमी की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल खतरनाक नहीं, रादर फायदेमंद है वो। तो ये आयुर्वेद में जो कहते हैं कि खट्टे पदार्थ, उसमें हो सकता हो कोई और चीज के बारे में बात कर रहे हो, बट हम फल की बात ही करेंगे। जो खट्टे फल होते हैं, इमली बहुत अच्छी है, एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छे होते हैं उसमें, तो खट्टे पदार्थ ऐसा बिल्कुल गलत है कि दिल के लिए हार्मफुल होते हैं
0: जी।
2: दूसरा टैकीकार्डिया जो है वो एक बीमारी है, जब आपकी हार्ट बीट 100 से ऊपर जा रही है इसका मतलब है कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम है। आप एंग्जायटी में तो भी टैकीकार्डिया हो जाएगा, आपने सिरप पी रखी है तो भी टैकीकार्डिया हो जाएगा, आपको टैकीकार्डिया की बीमारी है, बहुत टाइप की बीमारी ये होती है, पीएसवीटीज कहते हैं, एक्टोपिक एट्रियल टैकीकार्डिया कहते हैं। तो अगर आपकी हार्टबीट 100 से ज्यादा हमेशा से चलती है तो आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं। हाँ दौड़ते समय अगर आपकी हार्टबीट 100 जाती है तो एक नॉर्मल फिनोमिना है, बट रेस्टिंग स्टेज में अगर आपकी हार्टबीट 90-100 चल रही है, एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाएं। हम लोग इसको अच्छा नहीं मानते।
0: इससे क्या हो, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते
2: हैं? हार्ट अटैक के चांसेस है, अगर आपकी हार्टबीट बहुत लंबे समय तक ज्यादा चल रही है तो इससे आपका हार्ट का फंक्शन कम हो सकता है।
0: ओके, और इट कैन लीड टू फर्दर
2: हार्ट फेलियर लेटर ऑन, तो हम उसे टैकीकार्डिया इंड्यूस कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं।
0: तो दिखाना चाहिए।
2: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी। तो किस तरह से पता लगे? मैं एक्चुअली यही पूछना चाह रही थी कि कुछ ऐसे संकेत होते हैं या कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिससे आदमी सचेत हो जाए कि हाँ मुझे जाना चाहिए डॉक्टर के पास, क्योंकि नॉर्मली ऐसे तो लोग जाते नहीं है, चेकअप भी रूटीनली कई लोग नहीं कराते।
2: हमेशा याद रखिए आप एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे, आपको कोई सिम्टम नहीं था, सडनली आपने महसूस किया कि मैं चलती फिरती हूँ तो मुझे सीने में दर्द होने लगता है, मैं चलता हूँ तो मुझे सांस फूलने लगती है, मुझे चक्कर आ रहे हैं आजकल, मैं खड़ा होता हूँ तो सडनली आंखों के सामने अंधेरा छा जाता, मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज चल रही है, मेरे दिल की

0: धड़कन कम चल रही है, मेरे चलने में सांस फूलने लगी, पहले मैं 2 स्टेयर चल लेता था, अब नहीं चल पाता हूँ। हमने अपने नाखूनों में नीलापन देखना शुरू कर दिया, पैरों में सूजन देखना शुरू कर दिया। तो ये सारे के सारे इंगित करते हैं कि आपको कहीं ना कहीं हार्ट की प्रॉब्लम है, उसको जरूर और तुरंत इसका इलाज करें।
1: जी, तो अपने शरीर को देखें, उसको ऑब्जर्व करें, कुछ बदलाव अगर फील होता है तो जरूर डॉक्टर के पास जाएं। और कारणों की बात हम कर रहे थे, आज परिधि हमारे साथ हैं, बहुत सारे कारण आपने बताया हो सकते हैं हृदय रोग के, तो आप कुछ पूछना चाहेंगे, क्योंकि आप चाह रही थी युवाओं से संबंधित कुछ प्रश्न करना।
2: बिल्कुल, क्योंकि यही मेरा पहला प्रश्न था कि पहले हार्ट डिजीजेस तो ज्यादातर 50-60 साल उम्र की बीमारी मानी जाती थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि 25-40 साल के युवाओं में भी हार्ट अटैक्स, हार्ट डिजीजेस, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है, हमें सुनने में अब ज्यादा आने लगा है। तो डॉक्टर, आपके हिसाब से ये बढ़ते ट्रेंड के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, क्या हो सकता है?
0: देखो, जो हार्ट अटैक बचपन में यूथ में होता था वो हार्ट की बीमारी होती थी, रूमेटिक हार्ट डिजीज, जो गरीबी की बीमारी थी, इनको वाल्व में इन्फेक्शन हुआ, वाल्व खराब हो गया। दूसरी होती थी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, जो बचपन में पैदा होते ही होती थी, यूथ पे ही आ जाती थी। कुछ बीमारी होती थी कार्डियोमायोपैथी, जो यूथ में होती थी। अब यूथ में जो हम आप जिस बात पे कह रहे हैं कि आपको हार्ट अटैक हुआ, आपकी कोरोनरी आर्टरी थी, आपको उसमें ब्लॉकेज आ गया, वो ब्लॉकेज बंद हो गया, हाँ, यूथ में थोड़ा बढ़ रहा है। कारण उसका है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल का मतलब ये नहीं कि आप काम कर रही है तो आपकी लाइफस्टाइल खराब है, जो आप खाते पीते हैं, स्मोकिंग का ट्रेंड बहुत बढ़ गया। स्मोकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है हार्ट अटैक होने का, प्लस ड्रग्स का, कोकेन का इंटेक बहुत है, जो इलिसिट ड्रग्स है उनसे हार्ट अटैक बढ़ता है। फिर आपने देखा सिडेटरी हैबिट्स, आपके माँ बाप को हार्ट की प्रॉब्लम थी, आपका बच्चा 12 साल का, उसका वजन है 100 किलो, आपका बच्चा 20 साल का हुआ, उसका वजन हुआ 120 किलो, वो सिर्फ घर में बैठा रहता है, सिर्फ जंक फूड खाता है, सिर्फ हाई कार्ब्स डाइट खाता है, वजन बढ़ रहा है, डायबिटिक हो गया, हाइपरटेंसिव हो गया, तो उसकी हार्ट अटैक होने की संभावना 30 से 40 साल में ही हो जाएंगी। वही बच्चा इसके माँ बाप को हार्ट अटैक कोरोनरी आर्टरी डिजीज थी, अपनी उम्र को साथ के रखता, तो हो सकता है उसको हार्ट अटैक 70 साल में होता। तो एक ये भी कारण है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है, जो युवाओं में लाइफस्टाइल है, और तीसरा है आबादी बढ़ रही है, हमारा सोशल मीडिया बढ़ रहा है, तो पता भी लग जाता है,
1: ये भी बात है। लेकिन जैसे बहुत सारी चीजें होती है जो आपको इम्पैक्ट करती है, जब आप देखते हैं कि कोई इतना कॉन्शियस है अपने बॉडी बिल्डिंग के लिए, ये रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है, जिम जा रहा है, पर इस तरह की चीजें जब आप अपने सामने देखते हैं कि बिल्कुल जिम करते करते, एक्सरसाइज करते करते, और एज भी कम है, और वो रेगुलर वो रहा है हैबिचुअल इन एक्सरसाइज, तो हमें लगता है अरे ये एक्सरसाइज करने के बाद भी हो रहा है, तो क्या कारण?
0: पहली बात आप ये जान लीजिए कि हार्ट प्रोटेक्टिव एक्सरसाइज एक माइल्ड एक्सरसाइज है। अब 40 मिनट एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, उसके ऊपर करते हैं, तो ये मत मानिए हार्ट आपका प्रोटेक्ट है। इन लोगों में जो चीज हुई है, जैसे जिम करते करते, ये बेसिकली इनमें कोई ना कोई हार्ट की प्रॉब्लम थी जो इन्होंने दिखाई नहीं, उनको सिम्टम्स थे जो इन्होंने इग्नोर किए।
1: अच्छा।
0: अब एक बहुत बड़े कॉमेडियन जिम करते समय जिनकी डेथ हो गई, वो इसलिए हुई क्योंकि उनको एंजाइना हुआ, उनके हार्ट में 7-8 स्टंट डले हुए थे, तो उनको एंजाइना होने लगा, और उन्होंने कहा मैं जिम से एंजाइना ठीक कर लूंगा। अब वो 10 की रफ्तार से दौड़े तो हार्ट अटैक होना ही था। तो जो ये तरह की घटनाएं होती है, ज्यादातर आइदर इनमें कुछ चैनलोपैथीज होती है, कुछ ऐसी बीमारियां होती है हार्ट की जिसको हम लोग मानते हैं कि स्ट्रेस से, जिम करने से हार्ट अटैक हो सकता है, तो इनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो हम हमेशा कहते हैं अगर आप ज्यादा जिम करना चाहते हैं, एक बार अपने को डॉक्टर को जरूर दिखा के करें। बहुत बार हमने देखा जिम करने जा रहे हैं, कभी ब्लड प्रेशर ही नापा, अब जिम करते करते एक दिन को सांस फूलने लगी, तो देखा 200/100 बीपी था। 200/100 बीपी में आप जिम करोगे तो आपकी हार्ट की ऐसी तैसी होनी ही होनी है। तो ये है इम्पोर्टेंट चीज की ये दोष आप जिम को मत दीजिए, दोष उस इंसान को दीजिए जिसने वो चेक नहीं किया।
1: कई बार ऐसा भी होता है, जैसा आप बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब, कि हमारे यहाँ हमने ये देखा है, इंडिया की मैं बात कर रही हूँ, कि अपने आप से लोग टीवी देखकर शुरू कर देते हैं एक्सरसाइज करना, कि ये दिखाया जा रहा है मैं कर लूं, या जिम चले गए, वहां पे उन्होंने बोला मुझे जिम ज्वाइन करना है, और उधर में आपका इंस्ट्रक्टर भी नहीं है, आप बस चढ़ गए आप किसी मशीन पे, ट्रेडमिल पे, मतलब इट इज नॉट गाइडेड एज सच एंड इट इज नॉट कस्टमाइज्ड एज सच। तो ये सारी चीजें भी नुकसान कर सकती हैं, और शायद यही वो इम्पैक्ट डालती हैं जब आप इतनी अवेयरनेस के साथ एक्सरसाइज नहीं करते हो।
0: ये आपको अगर एथलीट नहीं बनना है, आपको बैडमिंटन प्लेयर नहीं बनना है, तो आप सुबह उठिए, एक नॉर्मल वॉक करिए 5-6 किलोमीटर पे, वॉक करने के बाद थोड़ी स्ट्रेचिंग करिए, योगा में हमारे पीटी सिखाते थे, हाथ को ऊपर ले जाओ, नीचे ले जाओ, आगे ले जाओ, थोड़ा पीछे स्ट्रेच कर लो, थोड़ा साइड में स्ट्रेच कर लो, इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। तो आप अगर एक स्वस्थ जीवन जीना चाहती हैं तो वॉक करिए, वॉक करने के साथ साथ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लीजिए, आपके लिए वो सफिशियंट है। अगर आप बॉडी बनाना चाहती हैं तो किसी की सहायता लीजिए, कोई ट्रेनर की सहायता लीजिए।

0: आप योगा करना चाहती हैं छोटे मोटे योगा आप आराम से कर लीजिए, बट अगर आप अच्छा योगा करना चाहती हो आप टीवी देख के करेंगी तो कहीं ना कहीं आप अपने को नुकसान पहुंचाएंगे।
1: जी बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं और हम चाह रहे हैं कि ये हाईलाइट हो हमारे इस प्रोग्राम में, ये फैक्टर्स जो कई बार हम इग्नोर करते हैं। हमें पता होता है हम अच्छे के लिए कर रहे हैं एक्सरसाइज या टीवी भी देख कर रहे हैं तो अच्छे के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली हमको हार्म पहुंचा रहा है ये हम नहीं जान पाते हैं। तो जो लोग भी कार्यक्रम सुन रहे हैं हम ये चाहते हैं कि आप जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं उनकी एडवाइस फॉलो करें। एक श्रोता वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर। हेलो
2: हेलो
1: हेलो जी, नाम बता दें अपना।
2: श्याम सुंदर धवन
1: जी। जी हाँ बताएं क्या पूछना है।
2: ऐसे है नमस्कार जी।
0: नमस्कार
2: मेरी मेरी 1903 में वारल टाइप का मिलता पीजीएल चंडीगढ़ 2016 में सर लोअर 16 में
1: साहब हमें समझ नहीं आ रहा है आपकी आवाज ब्रेक हो
0: मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बता रहे हैं कि आपके मिसेज का वॉल्व सुकुड़ गया तो क्या करें। अगर वॉल्व सुकुड़ गया तो आप डेफिनेटली कार्डियोलॉजिस्ट से मिलें, अपना इको कराएं और उसका इलाज।
1: और बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आ गए हैं व्हाट्सएप के माध्यम से भी, हमारे श्रोता हमारे गेस्ट का स्वागत कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है 48 ईयर्स की है एज है इनकी और इन्होंने जिम ज्वाइन कर रखा है। इन्होंने लिखा है जिम स्टार्ट करने से पहले कोई मेडिकल टेस्ट, जैसे हम अभी बात कर ही रहे थे उस पर का आया प्रश्न कि क्या कोई मेडिकल टेस्ट करवाना चाहिए या नहीं जिससे पता चले कि मैं फिट हूं। चानेश्वर गोत कराची से ये हमारे श्रोता हैं अमर रमेश कुमार खत्री।
0: देखिए बिल्कुल है, अगर आप बहुत लाइट सा जिम करना चाहें तो आप अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक करा लें, आप अपनी शुगर जरूर चेक करा लें आप, और इसके पहले ये जरूर जाने कि आपको कोई सिम्टम्स तो नहीं है। आपकी सांस फूलती है तो बिना डॉक्टर के दिखाए जिम ना जाएं। आपको चलने में सीने में दर्द होता है तो बिना दिखाए, आपको चलने में चक्कर आते हैं ना जाएं। तो अगर आप अच्छा जिम करना चाहते हैं तो आप अपना ब्लड प्रेशर शुगर एक ECG तो करा लें और एक कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन से अपनी एग्जामिनेशन करा लें, उसके बाद ही आप विग्रस जिम में जाएं। माइल्ड जिम में हम लोग कहते हैं कि ब्लड प्रेशर करा लें, शुगर ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है।
1: ओके, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का
0: जिम लेवल का जिम करना चाहते हैं।
1: बिल्कुल। प्रकाश चंद्र जी लिख रहे हैं रोहिणी दिल्ली से कि डिफरेंस बता दीजिए डॉक्टर साहब कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक का, आप बता चुके हैं हमारे कार्यक्रम।
0: हार्ट अटैक में, हार्ट अटैक हम बेसिकली एंजाइना को कहते हैं, आपके सीने में आर्टरी बंद हुई, आपको सीवियर चेस्ट पेन हुआ, और कार्डियक अरेस्ट मतलब मरीज बेहोश होकर गिर गया हो। तो हर कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक नहीं होता और हर हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट नहीं होता। कार्डियक अरेस्ट के और भी बहुत कारण है हार्ट अटैक के।
1: तो हार्ट अटैक जब होता है तो पेन,
0: तो उसमें 10% या 20% लोगों को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो हमने कहते हैं बेहोश होकर गिर गया, हमने CPR किया बचा लिया, नहीं बचा पाए। तो कार्डियक अरेस्ट का मतलब है कि आप बेहोश हो चुके हैं, आपका हार्ट काम करना बंद कर चुका है।
1: जी आपने CPR का जिक्र किया, ये एक फर्स्ट एड भी बहुत जरूरी है सबको जानना, CPR जानना, तो किस तरह से वो हेल्प करता है अगर किसी को लाइफ सेव कर सकते हैं।
0: आपका कार्डियक अरेस्ट हुआ इसका मतलब आपके हार्ट ने काम करना बंद कर दिया है, तो आपको ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी। तो आप मसाज करके हार्ट को अगर ऊपर से दबाएंगे तो उससे भी ब्लड पंप हो जाएगा। आपके पीछे हार्ट है, ऊपर से आपने चेस्ट दबाना शुरू किया तो हार्ट भी उसमें दबता है। जब हार्ट दबता है तो ब्लड पंप कर देता है। तो ट्रांजिएंट जब तक आपको फर्स्ट एड ना आ जाए आप कम से कम ब्रेन को ब्लड पहुंचा सकते हैं। और कार्डियक अरेस्ट तो हम 30 मिनट बाद भी रिवाइव कर सकते हैं लेकिन ब्रेन 3 मिनट बाद रिवाइव नहीं होता।
1: ओके, तो दैट इज व्हाई इट्स सो।
0: तो उस समय जब तक आपको मेडिकल हेल्प ना आए, अगर आप ढंग का कार्डियक मसाज करते रहते हैं तो ब्रेन बचा लेते हैं और पेशेंट को हो सकता है बचा भी ले जाए।
1: जी, तो अगर किसी का घर दूर है या उसको पहुंचने में टाइम लग रहा है तो CPR के थ्रू उसको बचा
0: लेते हैं। बिल्कुल, अगर वो कार्डियक अरेस्ट में उसको कोई पल्स नहीं मिल रही, उसकी सांस बंद हो गई है तो आप CPR करके, बिल्कुल बहुत बार आपने देखा होगा बहुत लोगों को बचाया जा चुका है।
1: पर CPR को सीखने के लिए उसको सही तरीके से करना बहुत जरूरी है,
0: बहुत जरूरी है। आजकल बहुत NGO ट्रेन करते हैं, आजकल बहुत YouTube में भी CPR के कैसे करें CPR, तो अगर आप चाहें तो आप YouTube से भी सीख सकते हैं और बहुत NGO की ट्रेनिंग देते हैं।
1: तो ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि हम किसी की मदद कर सकते हैं, किसी फैमिली मेंबर की या किसी रिलेटिव या फ्रेंड या नेबर जो भी हमें दिखता है उसकी हेल्प कर सकते हैं। हमारे एक कॉलर हमारे साथ है। हेलो
3: हेलो
1: जी, आप रेडियो डॉक्टर हैं
3: जी? जी अमित त्यागी बात कर रहा हूँ मैम, मैं सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: नमस्कार अमित जी।
3: सवाल मेरा मैम ये है कि जैसे दो इंसान घर में ही कसरत करते हैं, योगा करते हैं, उनके लिए भी कोई टेस्ट कराना चाहिए?
0: नहीं नहीं, आप एक हमेशा याद रखिए, आप अगर 40 साल 50 साल के युवा हैं तो कम से कम आपका एक बार ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर तो आपका मेजर होना ही चाहिए। ये तो आप करें या ना करें ये तो रूटीन है, क्योंकि अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है और आप योगा करते हैं तो ये गलत है, कंट्रोल करिए उसको।

0: तो जो एक सिंपल से टेस्ट है, आपका हीमोग्लोबिन 7 है और आप योगा करने चलेंगे, तो ये आप घर में योगा करते हैं बहुत अच्छी बात है। फिर भी हम हमेशा कहते हैं कि एक इंसान को साल में एक बार अपने बेसिक टेस्ट करा लेने चाहिए।
1: जी, आप हीमोग्लोबिन की बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, मुझे एक मैसेज दिखा है दिव्या का, बिहार से आए, हीमोग्लोबिन इनका 7.9 है, बीपी हमेशा कम रहता है, क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब?
0: हीमोग्लोबिन 7.9 क्यों है इसकी जांच करानी चाहिए, इनके ब्लड टेस्ट कराने चाहिए, हो सकता है आयरन डिफिशियंसी के कारण हो, हमें उसको सप्लीमेंट करना है। अगर हीमोग्लोबिन उससे ऊपर चला जाता है तो बहुत बढ़िया है, 7.5 हीमोग्लोबिन शरीर के लिए बहुत खतरनाक है, तो आप किसी डॉक्टर को दिखा के अपनी जांच कराइए।
1: और बीपी लिखा है हमेशा कम रहता है,
0: अच्छी बात है, बीपी कम रहना कोई
1: बीपी का कुछ इशू इतना नहीं है, लेकिन हीमोग्लोबिन के लिए आपको
0: बिल्कुल दिखाइए, आप बहुत कारणों से हीमोग्लोबिन कम होता है।
1: अच्छा, तो ये टेस्ट होंगे और पता
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी। और डॉक्टर साहब सुधीर कुमार कुतुबगढ़ से लिख रहे हैं, नमस्कार मैडम जी, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार, डॉक्टर साहब को बुलाते ही मैडम हार्ट अपने आप ठीक हो जाता है। तो डॉक्टर साहब आया करिए, इतने सारे श्रोताओं का हार्ट ठीक हो जाएगा। और हमने डॉक्टर डे पर डॉक्टर साहब को याद किया था, और आपने मुझे याद है आपने मैसेज भी किया था, और डॉक्टर साहब की एक कहावत हमें याद रहती है, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तो आप बता दीजिए डॉक्टर साहब, बहुत सारे हमारे श्रोता होंगे कि आपने क्यों कहा था, क्यों कही थी ये कहावत?
0: मैंने कहा था कि देखिए, आपको अगर आपके फैमिली में आपको माँ बाप को डायबिटीज है, आपके माँ बाप को ब्लड प्रेशर है, आपके माँ बाप को हार्ट अटैक है, उसके बाद भी आपने अपनी लाइफस्टाइल नहीं सही की, तो एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तो आपको बीमारी बहुत जल्दी होनी है
1: जी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में डॉक्टर साहब ने कहा था, और अगर आप ये बात याद रखते हैं तो ये वाली बात भी याद रखते होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी, आपने हमें मैसेज किया, हमें याद दिलाया है डॉक्टर साहब की बात, जो और सभी श्रोताओं तक पहुंची है। यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक लेकर वापस आएंगे, आप यूं ही हमें लिखते रहिए और इस कार्यक्रम को सुनते रहिए, क्योंकि हमें इंतजार है आपके प्रश्नों का। आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आप हैं रेडियो डॉक्टर में और रेडियो डॉक्टर में बात हो रही है आज प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीजेस पर, कैसे हृदय रोगों से अपने आप को सुरक्षित रखें, कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। हमारे रेडियो डॉक्टर हमारे साथ हैं, आप प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी हेड डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन डॉक्टर राकेश यादव, और हमारे साथ हमारी युवा प्रतिनिधि परिधि मित्तल साथ में है। आपके प्रश्न हमें लगातार मिल रहे हैं, हमारे श्रोता भी वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर, पहले इनसे बात कर लेते हैं। हेलो।
2: हेलो
1: जी, नमस्कार।
2: जी, मैं आईपी पांडे बोल रहा हूँ हॉटखस दिल्ली से।
1: जी
2: डॉक्टर साहब को और आपको भी मेरी तरफ से नमस्कार।
1: जी नमस्कार
2: डॉक्टर साहब। एक्चुअली ऐसा हुआ कि 2 साल पहले मेरे को गैस में थोड़ा सा गैस की प्रॉब्लम है मुझे, तो मैं एक सरकारी हॉस्पिटल में गया और डॉक्टर साहब ने मुझे ब्लड टेस्ट लिखा और ईसीजी करने को कहा। ईसीजी के बाद उन्होंने टीएमटी कहा और टीएमटी में भी कुछ प्रॉब्लम आया तो उन्होंने सीटी स्कैन कराया, उसमें कुछ भी नहीं आया जबकि टीएमटी और ईसीजी में कुछ प्रॉब्लम दिखाया। तो क्या ये हार्ट की प्रॉब्लम है और इन बिटवीन मुझे मेडिसिन डॉक्टर ने शुरू
3: किया? अगर आपको सीटी स्कैन नॉर्मल है सीटी एनजीओ तो आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज नहीं है, बट अगर ईसीजी में कोई और प्रॉब्लम है, वो और तरह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो आप अपने डॉक्टर से दिखाएं कि आपकी ईसीजी में क्या प्रॉब्लम है। टीएमटी अगर माइल्ड पॉजिटिव और सीटी नॉर्मल है तो इसके मतलब आप नॉर्मल, आपका हार्ट का एंजियोग्राम है, डोंट वरी।
2: डॉक्टर साहब उन्होंने एक्चुअली सीटी स्कैन को तो नॉर्मल बोल दिया लेकिन जो टीएमटी हुआ था उसमें कुछ प्रॉब्लम दिखा।
3: अरे टीएमटी को उठा के फाड़ के फेंक दीजिए, जब एक बार आपका सीटी हो गया उसमें सब नॉर्मल है तो टीएमटी का कोई रोल नहीं है।
2: ठीक है डॉक्टर साहब, मैं रेगुलर योगा करता हूँ और मॉर्निंग वॉक भी करता हूँ, तो क्या मुझे चांस बनता है क्या इस तरह की प्रॉब्लम होने का?
3: नहीं होगा, आप बढ़िया योगा करिए, बढ़िया वॉक करिए, अगर सीटी एनजीओ नॉर्मल है तो हार्ट अटैक होने की संभावना आपकी शून्य के करीब है।
2: थैंक यू डॉक्टर,
1: बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और एक और साथी हमारे फोन लाइन पर है। हेलो,
4: नमस्ते शालिनी जी।
1: जी नमस्कार
4: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
3: नमस्कार
1: जी, नाम बता दीजिए।
4: सर मैं सतबीर सिंह, गांव बिगान सोनीपत हरियाणा से।
1: जी जी बताएं बताएं
4: डॉक्टर साहब, मेरा हार्ट जो वर्टिकल होता है और हॉरिजॉन्टल, उसमें क्या साहब?
3: आपको हार्ट की कोई दिक्कत है?
4: वो मेरे हार्ट में कुछ खिंचाव सा होता है डॉक्टर साहब।
3: आपको चलने फिरने में कोई दिक्कत है? आपका इको खराब है?
4: दिक्कत नहीं है,
3: तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल
4: हुआ था तो ट्रैकिंग कार्डिया से टेम्प दे दिया।
3: देखिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल

0: सेंटर हार्ट से आपको अगर कोई दिक्कत नहीं है तो कोई बात नहीं है। हाँ, उसकी अनाटोमी में कोई दिक्कत है तो अलग बात है, वो हम बिना आपका इको देखे बता नहीं सकते। पर एज फार एज वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल हार्ट आपको कोई सिम्टम नहीं है तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं है।
1: चलिए, धन्यवाद कॉल करने के लिए। और आप कुछ पूछेंगे युवाओं के लिए संबंधित?
2: हाँ,
1: कुछ प्रश्न
2: मेरा
1: है
2: एक
1: आपके
2: प्रश्न
1: पास?
2: है। अभी डॉक्टर साहब से जब मैंने पहले पूछा था, उन्होंने ई सिगरेट की बात की थी, तो मेरा ये प्रश्न था कि आजकल बहुत से युवा ई सिगरेट या वेपिंग का इस्तेमाल करते हैं। कई लोगों का ये मानना है कि अगर उसमें निकोटीन नहीं है या वो निकोटीन फ्री है तो उससे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन क्या ये सच है? क्या ई सिगरेट या वेपिंग, चाहे उसमें निकोटीन हो या ना हो, दिल और फेफड़े की सेहत पे कोई भी असर नहीं डालता?
0: ये वेपिंग बेसिकली ई सिगरेट निकोटीन ही होती है, उसको कहा जाता है वो प्योर फॉर्म ऑफ निकोटीन है। सिगरेट में कहा जाता 7,000 चीजें सिगरेट से पेट अंदर जाती है, वेपिंग में कहा जाता सिर्फ निकोटीन जाता है। बट एक चीज मानिए, निकोटीन जो है वो एडिक्शन है, इसकी एडिक्शन लाइबिलिटी है। हो सकता है आपको हार्ट अटैक ना करे, पर ग्रेजुअली ये आपके दिमाग को खराब करेगा, एडिक्शन लाइबिलिटी है। और बहुत बार जैसे यूथ लेता है, इम्पोटेंसी का बहुत इम्पोर्टेंट कार्ड वेपिंग है। बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि ग्रेजुअली इम्पोर्टेंट हो रहे हैं बच्चे, स्किन की प्रॉब्लम निकोटीन से होती है, तो ये रिप्लेसमेंट नहीं है। और वेपिंग में आप देखोगे दिन भर पीता रहता है, तो वो भले कहता है कि सर वेपिंग में हम 40 वेप लेते हैं तो एक सिगरेट का निकोटीन जाता है, बट वो दिन भर आप ले रहे हैं तो आप बताइए कितनी निकोटीन कंज्यूम कर रहे हैं। तो वेपिंग देश में बैन है, और मैं तो बिल्कुल समर्थन करता हूं कि ये बैन होनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत अधिक मात्रा में निकोटीन जाता है।
1: जी, तो ये एडिक्शन
0: एडिक्शन है, बहुत बड़ा एडिक्शन
1: जी। हमारे एक और साथी हमारे साथ फोन लाइन पर है। हेलो।
3: हेलो
1: जी।
3: जी नमस्कार।
1: जी नमस्कार,
3: मैं मोहम्मद कासिम बोल रहा हूँ दिल्ली से।
1: जी कासिम साहब, बताएं क्या पूछना है?
3: डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: नमस्कार
3: सर, मुझे पूछना ये, जैसे आपने शुरू में कहा कि हार्ट में कैंसर भी हो सकता है, और कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको लोग सबसे जो है जब एडवांस स्टेज में पहुंच जाए तो इलाज कराते हैं, तो हार्ट कैंसर के बारे में बताइए विस्तार से।
0: हार्ट में जो कैंसर होता है वो हार्ट में कैंसर उसकी में हो सकता है, उसके फाइबर्स में हो सकता है, उसके पेरिकार्डियम पे हो सकता है, और ये कभी कभी स्लोली ग्रो करता है। तो हार्ट के अंदर कैंसर है तो सिम्टम मिलेंगे कि आपकी सांस फूलेगी, सांस फूल के वॉल्व खराब कर सकता है। तो हार्ट में जो भी कैंसर है वो भी ऐसा नहीं है कि साइलेंट होते हैं, और इसमें कुछ कैंसर का इलाज है, कुछ का नहीं है।
1: चलिए धन्यवाद, आपको प्रश्न का जवाब मिल गया। डॉक्टर साहब, मैसेजेस भी बहुत सारे हैं हमारे पास। एक ये मैसेज है लिखने वाले हैं, रोहतक से हमें मैसेज किया है आरएस मलिक जी ने, लिख रहे हैं कि डॉक्टर साहब मैं 70 साल का हूं और मेरे 2 बार स्टेंट पड़ चुके हैं और मैं इको स्प्रीन 75/40 ले रहा हूं। क्वेश्चन इनका बहुत स्पष्ट मेरे पास नहीं आया, लेकिन एक तो ये वेट लॉस के बारे में पूछ रहे हैं कि मुझे वेट लॉस है और क्या मैं दवाई रिड्यूस कर सकता हूं।
0: देखिए बेसिकली एस्प्रिन तो 75 से नहीं कर सकते, स्टैटिन 40 मिल रही है, तो अगर आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बहुत कम हो गया है तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं। अक्सर स्टैटिन से आपका वेट लॉस बहुत रेयर होता है, बट होता क्या है कि जब आपको हार्ट अटैक होता है तो आप अपनी जिंदगी को सुधार लेते हैं, तो आप कम वैसे ही खाते हैं, वॉक करना शुरू कर देते हैं,
1: ऑयली चीजें नहीं खाएंगे, डीप फ्राई,
0: तो आपका वेट अपने आप कम हो
1: जी,
0: जाता
1: जी,
0: है
1: जी, जी,
0: तो
1: जी।
0: अगर आपने ये सब काम नहीं किया है और फिर भी वेट लॉस हो रहा है तो जरूर आप डॉक्टर को दिखाएं। बट अगर आपने अपनी डाइट और सब रेस्ट्रिक्ट कर रखा तो वेट लॉस तो स्वाभाविक है।
1: और मेडिसिन को अपने से कम ज्यादा करना,
0: जो दवा दी गई है उसको बिल्कुल कम नहीं करना, इसमें कुछ दवाएं आजीवन खाई जाती है,
1: जितना डॉक्टर बोले, और जब उसको कम करवाना है तो डॉक्टर ही से लेकर एडवाइस आप
0: बिल्कुल।
1: मोनिश इतरीसी बिलास पुर यूपी से इन्होंने हमें लिखा है कि मेरे जिया जी को पसीना बहुत आता है, और क्या ये भी कोई संकेत है? क्या दिल की बीमारी का संकेत होता है अगर पसीना आए तो?
0: कुछ लोगों को ज्यादा पसीना आता है इसका किसी चीज से लेना देना नहीं है, उनको थोड़ा सा अपने को प्रॉपरली हाइड्रेट रखना चाहिए।
1: जैसे लक्षणों की जब हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, तो कौन से ऐसे लक्षण है? तो कई बार ये कहा जाता है पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है,
0: वो एक एपिसोडिक है, उस समय आपको बहुत पसीना आ रहा है क्योंकि आपका सिंपैथेटिक ड्राइव बहुत बड़ा हुआ है।
1: Okay.
0: बट अगर उनको ज्यादा पसीना आता है, दिन भर आता है, नॉर्मल है, तो उसके लिए
1: रूटीन में आता है तो ऐसी कोई बात नहीं है,
0: वो तो एपिसोडिक, उस समय आपको पसीना आ रहा है।
1: और क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जो बहुत अलार्मिंग होते हैं?
0: चेस्ट पेन सबसे इम्पोर्टेंट है, कि आपके चलने पे सीने में दर्द हो रहा, बहुत सीवियर, अक्सर एसिडिटी की फीलिंग होती है कि जलन हो रही है पेट में। तो अगर वो अनयूजुअल है और आपको लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है तो उसको कभी दबाए ना, उसको तुरंत लेके डॉक्टर के पास मिले।
1: और कई बार डॉक्टर साहब कहते हैं कि शोल्डर या हाथ में भी चला जाता है पेन,
0: देखिए नाभि से चिन तक कोई भी पेन अगर चलने फिरने में हो रहा है तो वो एंजाइना है। कोई भी पेन बहुत सीवियर हो रहा है, जिससे आपको स्वेटिंग हो रही है, आपको लग रहा है आपको घबराहट हो रही है, तो वो भी एंजाइम।

0: के सिम्टम हो सकते हैं। कभी कभी एंजाइना सिर्फ वॉमिटिंग के साथ प्रेजेंट करता है, आपको एक दो वॉमिटिंग हुई पता लगे इन्फीरियर वॉल्यूम आई है। तो कोई सिम्टम्स ओल्ड एज में इग्नोर ना करें अगर वो आपको ट्रबल दे रहे हैं।
1: और क्या ये सिम्टम्स सबसाइड कर जाते हैं अगर वो आदमी रेस्ट करे या बढ़ जाते हैं?
0: बेसिकली रेस्ट करने में कम तो हो जाते हैं, बट एक्यूट हार्ट अटैक जो पड़ रहा है उसमें तो आर्टरी आपको खोलनी है, आर्टरी तो बंद हो गई है। जो एंजाइना होता है उसमें आर्टरी 80% 90% तक बंद होती है, तो वो आगे का लोड नहीं ले पाती। जैसे रेस्ट करेंगे वो फ्लो चला जाएगा, पर जो एक्यूट हार्ट अटैक होता है उसमें तो आर्टरी बंद हो चुकी होती है। उसमें रेस्ट करने से दर्द कम नहीं होगा, हाँ आपको अस्पताल ले जाने में सहूलियत होगी।
1: जी जी, एक और हमारे साथी हैं जो कुछ पूछना चाहते हैं। हेलो,
2: नमस्ते मैम।
1: नमस्कार जी,
2: मैं उमेश गाजीबाद से बोल रहा हूँ।
1: जी जी बताएं उमेश जी, क्या पूछना है डॉक्टर साहब से?
2: डॉक्टर साहब को नमस्कार।
0: नमस्कार
2: डॉक्टर साहब, मेरी उम्र 44 वर्ष है, मैं ठीक हूँ, पर मुझे इस टाइम घबराहट होती है कभी कभी, तो मैं आपसे ये जानना चाहता है किस बीमारी का संकेत है और मुझे कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए जिससे मुझे पता पड़ जाए।
0: पहले तो आप डॉक्टर के पास जाइए, घबराहट बहुत बार आपकी एंजाइटी से होती है, आपकी स्लीप डिस्टर्ब है, आपके जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ प्रॉब्लम है, आपकी फैमिली प्रॉब्लम है, तो पहले आप अपना असेसमेंट कराइए कि ये घबराहट किस कारण हो रही है, तब इलाज कराइए। ज्यादातर ये घबराहट जो होती है हम उनको एंजाइटी के कारण ही होती है, और साइकेट्रिस्ट इसके लिए बेस्ट लोग होते हैं।
1: उमेश जी जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, पहले आप इसको रूल आउट कर लीजिए कि कोई स्ट्रेस या एंजाइटी तो नहीं है आपको। मनीषा जी हमें लिख रही है, 75 ईयर्स की, रांची में रहती है। डॉक्टर साहब मुझे AFIB हो गया है, कोई बीमारी का नाम लिखा है उन्होंने,
0: AFib,
1: इन्होंने कैपिटल
0: एट्रियल फिब्रिलेशन हो गया 75 साल में। कोई बात नहीं, इसका इलाज है, कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाइए, इसकी दवा है, कंट्रोल करिए।
1: ये हार्ट डिजीज है,
0: कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत होता है इस एज में।
1: सावधानी कुछ लिख सकते,
0: दवा खाइए, आपको जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे वो दवा खाइए, ये आप अपनी अकल से इसको ठीक नहीं कर सकते।
1: ठीक है, इन्होंने लिखा दवाई तो मैं खा रही हूँ, पर कोई सावधानी हो तो आप बता।
0: कुछ नहीं है, आप बस योगा कर सकती है, रिलैक्सिंग एक्सरसाइज कर सकती है, तो उसमें भी पाया गया ये इसके इंसिडेंस कम हो सकते हैं।
1: जी तो जैसे आपने बताया कि बहुत सारी ये बीमारियां हो सकती हैं, तो किस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं? अगर एनुअली हम कोई टेस्ट कराना चाहें तो कर सकते हैं, प्रिवेंटिव की बात करें?
0: बेसिकली एनुअल चेकअप का जो फंडा है कि आप हमेशा अपना एक साल में एक बार ब्लड प्रेशर, अगर आपको नहीं है, शुगर और कोलेस्ट्रॉल कराएं, तीन बस।
1: अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, जैसे आजकल बहुत
0: इलाज कराएं, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो इलाज कराएं, शुगर बढ़ी हुई है तो इलाज कराएं, और आपका एक जनरल एग्जामिनेशन हो जाए। इतना अगर आप कराते रहते हैं तो आपकी जो बीमारियां हैं वो बहुत जल्दी पकड़ में आ जाएंगी।
1: जी तो प्रिवेंशन पर हम और बात करेंगे, हमारे एक श्रोता भी आ गए फोन लाइन पर, मैं एक म्यूजिकल ब्रेक लेने वाली थी लेकिन पहले इनसे बात कर लेते हैं। हेलो
3: हेलो, हाजी सालनी मित्तल जी, नमस्कार।
1: जी जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
3: और डॉक्टर साहब को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, मैं PR साहू बोल रहा हूँ, लक्ष्मी विहार बुढ़ारी से।
1: जी जी साहू जी बताएं क्या प्रश्न है?
3: मैं ये पूछना चाह रहा था जी कि पहले मैं 10 साल पहले BP की दवाई ले रहा था, तो अभी ये कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो डॉक्टर ने मुझे प्रेस्क्राइब किया 14, तो सर उससे जो है ना कम हो गया, मतलब ये हो गया अब 130 और 64।
0: बढ़िया, खाते रहिए दवा से कंट्रोल में।
3: तो सर ये मतलब कंटिन्यू रखना है या छोड़ना है?
0: कभी नहीं छोड़ा जाता, बीपी की दवा अगर एक बार शुरू हो गई तो जिंदगी भर चलनी है, कभी मत छोड़िएगा उसको।
3: अच्छा अच्छा ठीक है सर, यही मैं पूछना चाह रहा था।
1: धन्यवाद, आपको जवाब मिल गया। और यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक लेकर वापस आएंगे। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं आप हमें फोन कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ पर रहेंगे 4 बजे तक, क्या आपके क्वेरीज हैं आप जरूर पूछिए। हम बात कर रहे हैं हार्ट डिजीजेस पर।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर और बात हो रही है प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीजेस पर। हमारे साथ परिधि हैं। परिधि, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से?
1: मैंने जैसे शुरू में बताया था कि यूथ का मेरा भी काफी बहुत खराब स्केड्यूल हो गया है, बिकॉज वर्क है, लेट तक चल रहा है, लेट उठ रहे हैं, टाइम का कुछ वो खाने पीने का कुछ वो है नहीं स्केड्यूल। तो अगर किसी व्यक्ति का स्लीप स्केड्यूल हमेशा से ही इरेगुलर हो तो क्या शरीर को इसकी आदत पड़ जाएगी?
2: नहीं पड़ सकती।
1: क्या उससे बीमारियों का खतरा कम हो जाएगा?
2: बढ़ जाएगा। देखो, अच्छा। हमेशा याद रखो, स्लीप जो है वो आपके शरीर में दिमाग को ही नहीं, शरीर के हर अंग को रेस्ट देता है। इसीलिए कहा जाता है कि स्लीप के चार साइकिल होते हैं। अगर आप चार साइकिल प्रॉपर नहीं कवर कर सकते हैं तो आपकी स्लीप अच्छी नहीं है। स्लीप अच्छी नहीं है तो आप सुबह चिड़चिड़े बनेंगे, आपको थकान रहेगी, पैर में दर्द रहेगा। तो ये जरूर मानिए कि स्लीप अच्छी लेना बहुत जरूरी है। और आदत, अगर आप इररेगुलर स्लीप में हैं तो आपकी आदत नहीं बन जाएगी, आपका शरीर खराब होना शुरू हो जाएगा। दूसरा बात है, आजकल जो मल्टीनेशनल्स में युवा काम कर रहे हैं, जो रात में 2 बजे तक काम करते हैं, मैं हमेशा कहता हूं अगर आप 2 बजे तक काम कर रहे हैं तो 2 बजे के बाद 4 बजे तक पार्टियां मत करिए। 2 बजे काम बंद करके खाना खाइए, सो जाइए और सुबह उठिए 8 बजे 9 बजे। आप ये मत कीजिए कि 4-5 तक पार्टियां होती है, फिर शरीर आपका इतना थक चुका होता है कि आप 4 घंटे की स्लीप से शरीर के लैक्टिक एसिड जो मसल में जमा हो जाते हैं वो निकाल नहीं पाते, तो दिन भर थकान होती है। दूसरी बात, आप अपना

0: ऐसा नहीं होता है। हम क्या करते हैं, मीटिंग के बीच में अपने को रेस्ट देने के बजाय और टॉर्चर करते हैं। तो जब आपकी लाइफस्टाइल ऐसी हो तो जरूर बीच बीच में रेस्ट लें। जापान में लोग काम करते हैं, उनको हर 2 घंटे के बाद स्लीपिंग रेस्ट मिलती है। हम नहीं लेते, हमें 2 घंटे की छुट्टी मिली भी तो भी हम टहलने चले जाएंगे। आपकी उस लाइफस्टाइल को भी मॉडिफाई करके आप बिल्कुल स्वस्थ जीवन जी सकती हैं।
1: जी अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न है मेरा कि ऐसे आजकल बहुत एक्टर्स क्रिकेटर्स फॉलो कर रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं कि वो सजेस्ट करते हैं कि मैं एक ही तरीके का खाना खाता हूँ 6 महीने, मेरी बॉडी उससे यूज्ड टू हो जाती है। बट क्या ये सही है, क्योंकि क्या आपको न्यूट्रिएंट्स अलग अलग मिल रहे हैं अगर आप सेम ही तरीके का खाना खाने 6 महीने?
0: सेम तरीके का खाना क्या होता है, जैसे हमारे गाँव होते थे, हमारे बचपन में हमें क्या मिलता था, हमें सब्जी मिलती थी, दाल मिलती थी, पराठा मिलता था, चावल मिलता था, दही मिलता था, अचार मिलता था, कभी कभी राजमा छोला मिल जाता था। तो अगर आप इसको सेम माने तो ओके है, बट आप कहे मैं राजमा और चावल ही 6 महीने खाऊंगा, मैं उसके फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ। इसीलिए बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर चीज में हर चीज होती है। मैं हमेशा कहता हूँ जो हमारी ट्रेडिशनल इंडियन डाइट थी जिसमें 8 कटोरा होते थे थाली में, उसमें छोटी सब्जी चबली और सब अलग अलग होती थी,
1: थाली सिस्टम होता
0: उसमें सब चीज होता था, तो उसमें आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते थे। तो कभी भी एक पर्टिकुलर डाइट के फेवर में मत जाए आप। नॉर्थ की रहने वाली है तो साउथ के डॉट के फेरे में मत जाए। वो आपका जो जेनेटिक मेकअप है, आपके पिछले 1000 सालों से आपके एंसेस्टर यही खाते आए हैं, आपके पेट के में दाल चावल है, और सीधे जाके आप डोसा खाने रोज लगेंगे तो आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगी। ये मैं बहुत क्लियर बात करता हूँ। तो आपका जो ट्रेडिशनल डाइट है उसको खाती रहिए आप।
1: जी, तो डाइट पर मैं चाह रही थी बात करने की, और परिधि ने पूछ लिया, काफी विस्तार से आपने बताया कि डाइट कैसी होनी चाहिए। लाइफस्टाइल की भी बात हम कर रहे थे, तो जैसे आपने बताया कि खाकर सो जाएं, तो हम जनरली कहते हैं कि फौरन सोना नहीं चाहिए, तो ये कहीं विरोधाभास होता है, क्या किया जाए?
0: एक सिंपल सी बात याद रखिए, आप अच्छा खाइए, अच्छा सोइए, खाने के बाद इमीडिएट सोने जाएंगी, और आप दिक्कतें हचक के कभी मत खाइए। आपका पेट 1/3 खाली रहना चाहिए। खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए। तो अगर आप हचक के खाएंगे तो जैसे लेटे ही आपके इसोफेगस में खाना आने लगेगा। तो थोड़ी से 10-15 मिनट बैठिए, तब सोइए। एक कंसेप्ट, हचक के खाने का बंद करें। जब पेट आधा खाली हो तो छोड़ दें, फिर 2 घंटे बाद खा लें। कम कम खाइए, बार बार खाइए, अच्छा खाइए, अच्छा फैट खाइए, अच्छा कार्ब्स लीजिए, और सब चीज खाइए।
1: जी,
0: ये है अच्छी डाइट का मतलब।
1: जी, और आप एक बात हर बार जब आते हैं तो बोलते हैं खुश रहिए।
0: हाँ,
1: ये बात आप हर बार बोलते हैं, तो मैं वही रिपीट करना चाहूंगी कि
0: बिल्कुल
1: खुश रहिए, आपने ये बात बोली, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है।
0: आप खुश रहेंगी तो आप हर काम अच्छा करेंगी, आप दुखी रहेंगी तो हर काम दुखी करेंगी।
1: जी बिल्कुल, और जैसे लाइफस्टाइल की भी हमने बात की, खान पान की, कुछ तनाव या गुस्सा या नींद ठीक से ना हो किसी,
0: बहुत खराब चीज है।
1: जी,
0: तनाव, गुस्सा, नींद, आप गुस्सा करिए पर गुस्से से तनाव में मत आइए। मैं बहुत चिल्ला देता हूँ, वो गुस्सा इसलिए कि उसको सही करना है, पर गुस्से से आप अगर तनाव पे आ गई, तनाव से आपको नींद नहीं आई, तो आपकी पूरी लाइफस्टाइल खराब हो जाएगी।
1: तो वो भी इम्पैक्ट करता है।
0: आप खाना अच्छा नहीं खाएंगी, आप स्मोकिंग ज्यादा करेंगी, आप जंक फूड ज्यादा खाएंगी, आप चिड़चिड़ी होंगी, आपका काम नहीं होगा, आपका काम पेंडिंग हो जाएगा। ये सारी चीजें जो हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आप खुशी खुशी जाएंगी, अरे यार काम कर लेंगे, वहां जाके दोस्त से हंस के बात करेंगी, किसी ने काम नहीं किया चलो हो जाएगा, आप देखिएगा आपका वर्क एफिशिएंसी ज्यादा हो जाएगी।
1: तो माइंडसेट भी
0: बिल्कुल बहुत जरूरी है, और ये स्वस्थ शरीर के लिए सबसे अच्छी बात हम कहते हैं अच्छे वचन, अच्छे विचार और अच्छा खाना।
1: तीन चीजें
0: अगर आप फॉलो करेंगी तो आप शरीर के हर अंग को स्वस्थ कर सकती हैं।
1: तो हमारे पास समय अब ज्यादा बचा नहीं है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं डॉक्टर साहब, जो धन्यवाद भी दे रहे हैं आपको। बहुत सारे उन्होंने प्रश्न ऐसे पूछे हैं जो बीमारियों का और दवाइयों का, पर क्योंकि हम आज खासतौर पर प्रिवेंशन पर बात कर रहे हैं तो मैं ले भी नहीं पाऊंगी, लेकिन एक दो ऐसे आपके बारे में कुछ मैसेजेस हैं तो मैं देना चाहूंगी। डॉक्टर राकेश यादव का जवाब देने का स्टाइल बहुत ही लाजवाब है, थैंक्स डॉक्टर साहब। प्रकाश जी लिख रहे हैं रोहिणी दिल्ली से, और साथ ही साथ एक प्रश्न थोड़ा अलग हटके, नरदेव सिंह चौहान जी ने कोटद्वार उत्तराखंड से लिखा है कि आजकल डॉक्टर यादव का बहुत अच्छा लगता है प्रोग्राम, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज दिल की बात हो रही है तो क्या कारण है लोगों को दूसरों के प्रति दिल में जगह कम हो रही है, क्या ये भी दिल की बीमारी मानी जाए क्या?
0: बिल्कुल है, आप अपने दिल के दुख अगर दूसरों के दिल में नहीं डाल पा रहे हैं तो आप ही दुखी रहेंगे। आप अपने दुख दिल के प्यार को दूसरों के दिल में नहीं डाल पा रहे हैं तो प्यार फूलता फूलता फट जाएगा। ये बिल्कुल सच है,
1: ये सच है
0: कि दिल खुश तब रहेगा जब वो बांटा जाए किसी के साथ।
1: जी बिल्कुल, बहुत सारी और बातें हैं डॉक्टर साहब, आपको पुनः आना होगा।

0: आप आमंत्रित करेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हमारे श्रोताओं के छूट गए। तो मैं धन्यवाद दूंगी डॉक्टर राकेश यादव का, जो प्रोफेसर है कार्डियोलॉजी में, हेड है डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन एम्स न्यू दिल्ली में, कि आप समय निकालकर यहां आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और धन्यवाद देंगे परिधि मित्तल को कि आपने समय निकाला है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो युवाओं के मन में चलते हैं, जो शायद हमें ध्यान न रहते, आपने वो डॉक्टर साहब से पूछे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने की हमें आज्ञा दीजिए। आप अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो healthairdelhi@gmail.com पर हमें लिख सकते हैं। स्वीकार करिए अपने दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार।
1: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
3: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
2: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
4: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
5: ठीक है।
4: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा ना इनके नाम है, उसका जो खर्चा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
3: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
2: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
6: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
2: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
3: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
2: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
3: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
2: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
3: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
2: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
3: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

आकाशवाणी रेनबो पर अब सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। भारत ने 22 भारतीय नागरिकों को ले जा रहे दो वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी में पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़े सभी पक्षों के साथ बैठक की। बैठक में पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी पंकज सिंह की अध्यक्षता में एक मध्यस्थ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों ने पर्यटन, एआई और सुविधाजनक यात्रा पर केंद्रित जयपुर घोषणा पत्र को स्वीकृति दी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज ब्रिक्स देशों के मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम के निकट ऐतिहासिक थोटलकोंडा बौद्ध विरासत स्थल का दौरा किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने प्रतिष्ठानों से आग्रह किया है कि वे ईपीएफ के दायरे से बाहर कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारी नामांकन अभियान 2026 का लाभ उठाएं। सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरीफेनिरामाइन मैलेट और फिनाइल एफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की सशक्त समिति ने आज नई दिल्ली में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के गैर कृषि आजीविका घटक के अंतर्गत प्रस्तावों की समीक्षा की। दिल्ली में पर्यावरण मानकों के उल्लंघन के मामले में 106 इकाइयां चिन्हित की हैं, 78 इकाइयां वैध मजदूरी के बिना संचालित पाई गई। सूचना और प्रसारण मंत्री डॉ एल मुरुगन ने आगामी 57वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव इफ्फी की तैयारियों के लिए गठित संचालन समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मतदाताओं के लिए अनिवार्य फोटो पहचान पत्र और नागरिकता प्रमाण पत्र की मांग दोहराई। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज महिला डबल्स के सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला चीन की लियू शेंग शू और टेन निंग से होगा। पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज शाम भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

Hi dear friends, welcome to Lamhe program with me, your RJ Chetan. सजीवों मनुष्य समेत सभी जीव जंतु के शरीर में जैविक क्रियाओं यानी बायोलॉजिकल फंक्शन के संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। सजीवों द्वारा भोजन पोषक पदार्थ का अंतर्ग्रहण भोजन को शरीर में पहुंचाने की क्रिया पाचन अवशोषण और स्वागीकरण करने एवं अपच पदार्थ का परित्याग करने की संपूर्ण प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। ऊर्जा उत्पादन शारीरिक वृद्धि और टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक पदार्थों को पोषक पदार्थ कहते हैं। हमारे आहार में ऐसे फूड शामिल होने चाहिए जो सही मात्रा में पोषक तत्वों की आपूर्ति कर सके। इस तरह के

आहार को संतुलित आहार कहा जाता है। ऊर्जा उत्कों के रखरखाव और शारीरिक क्रियाओं के लिए हर व्यक्ति को 6 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिसमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, पानी और खनिज शामिल है। आइए विस्तार से इनके बारे में जानते हैं आज के लम्हे प्रोग्राम में आपके आरजे चेतन से। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। प्रोटीन शरीर के पोषण के लिए प्रोटीन एक बहुत जरूरी न्यूट्रिएंट्स है, जिसका सेवन हर किसी को करना चाहिए। हमारे शरीर को अच्छे तरह से काम करने के लिए, मांसपेशियों के निर्माण तथा हमारे शरीर की कोशिकाओं को बनाने और सुधारने के लिए प्रोटीन अत्यंत जरूरी है। साथ में प्रोटीन हमारे शरीर की ऊर्जा का स्रोत भी है। प्रोटीन के समृद्ध स्रोत में अंडा, मछली, मीट और बीन्स शामिल है। प्रोटीन शरीर को अमीनो एसिड्स प्रदान करता है। विटामिन, हमारे शरीर को विटामिन की बहुत ही जरूरत है। यदि किसी भी कारण कोई विटामिन हमारे शरीर को न मिल पाए तो हमारे शरीर विटामिन जनित रोगों से ग्रस्त हो सकता है। विटामिन वह पदार्थ है जो आपके शरीर को ग्रो करने में मदद करते हैं। यह आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं तथा कोई बीमारी न आए। ज्यादातर विटामिन हमें फल और सब्जी से प्राप्त होते हैं। मिनरल्स एक अच्छे न्यूट्रिशन है। कुछ महत्वपूर्ण मिनरल या खनिज हमारे शरीर के ठीक ढंग से काम करने के लिए जरूरी होते हैं। ये न केवल शरीर के मेटाबॉलिज्म को सही करते हैं, बल्कि आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा रखते हैं। इसके स्रोत में फल, सब्जी, डेयरी उत्पाद, मांस और मछली शामिल है। कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टार्च या मन प्रमुख भोजन पदार्थ है, जो कई तरह के खाद्य पदार्थ में पाया जाता है। आलू, साबुदाना, चावल, साबुत अनाज, पास्ता, रोटी, मक्का आदि में पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसे खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है तथा यह पाचन में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वसा या फैट हमारे आहार का मुख्य घटक है और शरीर में कई काम करता है। इसके आवश्यक स्रोत में डेयरी प्रोडक्ट, मांस, बीन्स और नट तथा वनस्पति तेल जैसे खाद्य पदार्थ शामिल है। फैट फैटी एसिड्स में पच जाता है, जिसका उपयोग ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है। पानी को भी हम न्यूट्रिशन में शामिल करते हैं। शरीर का लगभग 70% हिस्सा पानी से बना है। यह पर्याप्त पानी पीने से शरीर में तरल संतुलन को बनाए रखने में सहायता मिलती है, जो शरीर में पोषक तत्वों को परिवहन में मदद करते हैं। शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और भोजन को पचाने में सहायता करती है। इसीलिए कभी अपने शरीर में पानी की कमी न आने दे। किसी भी सजीव के लिए पोषण जरूरी है। इसके लिए शरीर क्रियाएं संभव नहीं है। जिस प्रकार से किसी वाहन के लिए फ्यूल की जरूरत पड़ती है, इसी प्रकार हमारे शरीर को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। आवश्यक ऊर्जा के विभिन्न अवयवों मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट एवं वसा के ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं। भोजन शरीर की वृद्धि एवं क्षतिग्रस्त अंगों एवं ऊतकों की मरम्मत में योगदान करता है। इस कार्य को प्रोटीन, खनिज, लवण, विटामिन आदि सम्मान करने में योगदान करना है। भोजन शरीर के विभिन्न अंगों एवं जंतुओं को उचित दशा में बनाए रखता है और उनका उचित संचालन कर उपापचय क्रियाओं पर नियंत्रण रखने में योगदान करता है। संतुलन भोजन शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। आमतौर एक ह्यूमन बॉडी को उसकी उम्र और जैविक क्रियाओं के अनुसार पोषक तत्वों की जरूरत होती है। बच्चों, गर्भवती महिलाओं और
वर्कर्स के लिए अलग अलग मानक तय किए गए हैं और इन्हीं मानक के अनुसार

व्यक्ति को अपने भोजन में पोषक तत्वों को सम्मिलित करना है। स्वस्थ भोजन करने से सिर्फ आपका शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि आपका दिमाग भी तेज होता है। स्वास्थ्य के लिए अच्छा खाना खाने से शरीर मजबूत होता है। स्वस्थ आहार हड्डियों को मजबूत रखता है। पौष्टिक भोजन गर्भावस्था के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हरी सब्जियों और फल मोटापा, कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग जैसी गंभीर शारीरिक समस्याओं से बचाव करते हैं। खासकर वो खाद्य पदार्थ जिसमें फाइबर की अधिक मात्रा होती है। जितना हो सके तेल मसाले वाले खाद्य पदार्थ के सेवन से बचें। इनको लगातार सेवन करने से तरह तरह के बीमारियां आ सकती है। पानी खूब पिए। शरीर में पानी की कमी निर्जलीकरण का कारण बनती है, दैट इज डिहाइड्रेशन, जिससे किडनी की समस्या, त्वचा संबंधी समस्या, उल्टी, बुखार और कई अन्य परेशानियां हो सकती है। शुगर शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन ज्यादा शुगर युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। इससे दांत खराब हो सकते हैं, मोटापा, डायबिटीज जैसी समस्या खड़ी हो सकती है। उपवास करना शरीर के लिए भी फायदेमंद हो सकता है, साथ साथ शरीर की कई अन्य समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता है। हालांकि उपवास के दौरान आप नियमित रूप से पानी पीते रहे, फल ड्राई फ्रूट का सेवन कर सकते हैं, आपके शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। तो दोस्तों, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस ब्यूटीफुल प्रोग्राम विच वॉज वेरी इन्फॉर्मेटिव। आई गेट बैक टू यू इन आर नेक्स्ट सेगमेंट। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम। बाय दोस्तों। आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.

0: आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी और आकाशवाणी एफएम रेनबो पर इस वक्त आपके साथ जुड़ चुकी हूँ मैं दीपिका, लेकर हाजिर हूँ मैं प्रोग्राम अल्फा जैन, जहाँ आज यानी सैटरडे को हम कहते हैं लेट्स डिटॉक्स। क्या कुछ खास आज के प्रोग्राम में होगा कि इस बारे में बातें करूंगी, सब बताऊंगी। फिलहाल इस खूबसूरत से गाने के साथ करते हैं आज के इस शो की शुरुआत।

दोस्तों, हमारे इंटरनेट ब्राउजर में कैसे हिस्ट्री डिलीट करने का ऑप्शन होता है ना, और कई बार जब ब्राउजर हैंग करता है या फिर कोई दिक्कत होती है तो अक्सर कहा जाता है कि हिस्ट्री डिलीट कर दो या फिर क्लियर कर दो एकदम। अब हम कर देते हैं ऐसा, लेकिन हमारे दिमाग में तो ऐसा कोई बटन होता नहीं है। पर अगर होता तो कितना अच्छा होता ना। सोचिए, पिछले हफ्ते की टेंशन डिलीट, किसी की कही हुई बुरी बात डिलीट, कोई रिग्रेट्स जो परेशान कर रहे हैं डिलीट, उस वक्त मैंने ऐसा क्यों बोल दिया था या मैं ऐसा क्यों नहीं बोल पाई थी, ये वाली बात भी डिलीट, और वो 2 साल पुरानी एक नाराजगी जो अचानक रात को आकर याद हमें नींद उड़ा देती है, भाई उसको भी पूरी तरीके से क्लियर करो। अब ऐसा होता तो नहीं है, क्योंकि देखिए असल जिंदगी में दिमाग की हिस्ट्री एक क्लिक में डिलीट नहीं होती। अगर ऐसा हो ही जाए तो फिर क्या ही बात है। पर हाँ, हम वीकेंड पर थोड़ा सा मेंटल रीसेट तो कर ही सकते हैं, ताकि अगले हफ्ते के लिए हम खुद को एक बार फिर से तैयार कर पाए और ये सोच पाए कि क्या कुछ है जिसे हमें साथ लेकर अगले हफ्ते में आगे जाना है और कौन सी है वो बातें जो हमें यहीं पे छोड़ देनी है, ताकि अगले हफ्ते हम एक फ्रेश स्टार्ट कर सके। तो आकाशवाणी FM रेनबो प्रोग्राम

Well, जब हम दिमाग की हिस्ट्री क्लियर करने की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि यहाँ पर क्लियर करने का मतलब ये नहीं है कि आप एक क्लिक से सब कुछ डिलीट कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो हम याद रखना चाहते हैं, जो हमें याद रखनी चाहिए, लेकिन बहुत सारी पुरानी बातों को भूलना जरूरी होता है और उसके साथ साथ भूलने के अलावा कुछ बातों को देखने का नजरिया बदलना जरूरी होता है। जरूरी नहीं आप हर पुरानी बात को भूल ही जाएं, क्योंकि कुछ यादें हमें परेशान करने के लिए नहीं बल्कि हमें कुछ सिखाने के लिए होती हैं। ऐसे में बार बार पास्ट को कुरेद कर, अगर मैं ज्यादा पीछे नहीं भी जाऊं, चलिए एक हफ्ते की बात करते हैं, तो एक हफ्ते में अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जो आपको अच्छा नहीं लगा, कुछ कहना था जो कह नहीं पाए, किसी ने कुछ कहा जिसका जवाब देना चाहते थे नहीं दे पाए, या फिर किसी ने कुछ कहा जो दिल में चुभ गया, तो इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं साइड करना बहुत जरूरी है, वो भी तब जब वो आपकी मेंटल पीस पर असर डालने लगे। और अगर अतीत की बात की जाए तो हर बार अतीत को डिलीट करना नहीं बल्कि कई बार उसे एक्सेप्ट करना जरूरी होता है, क्योंकि जब हमारा दिमाग ओवरलोड होता है ना, और अगर हम उसे रीसेट नहीं कर पाते, हम उसे आराम नहीं दे पाते हैं, तो फिर बहुत दिक्कत होती है और उस दिक्कत का असर हमारे काम पर, हमारी हेल्थ पर, सब पर साफ नजर आता है। तो बस वीकेंड पर हम ये कर सकते हैं कि जरा स्लो हो सकते हैं, इन सारी चीजों को साइट कर सकते हैं और सोमवार को ऐसे शुरुआत कर सकते हैं जैसे ब्राउजर में एक नई टैब खुली हो, बिल्कुल नई, बिल्कुल ताजा, और नई चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए, नई चैलेंजेस से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार। पर हाँ, साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि अगर कोई बात आपको बार बार परेशान कर रही है, आप उसे नहीं भूल पा रहे हैं, तो किसी के साथ बैठिए, अपने दिल को जरा सा खोलिए, और बहुत जरूरी है कि आप अपने दिल और दिमाग को वो पीस, वो सुकून दें, जिससे आप आगे वाले हफ्ते में, आने वाले महीने में या आने वाली जिंदगी में खुशी से आगे बढ़ सके। यकीन मानिए, अपने दिमाग का ख्याल रखना, अपने दिल का ख्याल रखना, अपने मन का ख्याल रखना, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना और ओवरऑल अपनी जिंदगी की कमांड संभालना, अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ना बहुत जरूरी है।

0: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
2: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सरायकाली खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में,
1: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में, आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में,
2: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
1: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
3: हिमालय की गोद से लेकर
4: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
3: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
4: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
3: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
4: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
3: तो सुनना ना भूलें
4: रेनबो डेस्टिनेशंस
3: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
5: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
6: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
7: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
6: म्यूजिक मस्ती।
8: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
6: म्यूजिक मस्ती।
9: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
3: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

0: तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: मम्मी बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
2: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
1: अरे मम्मी एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
2: हैं इतनी जल्दी?
1: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुर होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
6: आकाशवाणी FM रेनबो पर आप हैं दीपिका के साथ, प्रोग्राम सुन रहे हैं आप अल्फा जैन।

इंटरनेट ब्राउजर की हिस्ट्री तो क्लियर कर सकते हैं, लेकिन दिमाग में जो चीजें, जो फाइल्स स्टोर हो जाती हैं, कई बार वो बिल्कुल बेकार की होती है, हमें परेशान कर रही होती है, लेकिन फिर भी उन्हें क्लियर करना बड़ा मुश्किल होता है। अब यहाँ एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि जो बात हमारे हाथ में नहीं है, उससे अगर हम अपने दिल दिमाग में रखेंगे तो उससे दिमाग की और हमारी जो बैटरी है ना, वो बहुत जल्दी ड्रेन होती है। जी हाँ, ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम बहुत सारी ऐसी बातों को लेकर परेशान हो रहे होते हैं जो असल में हमारे हाथ में नहीं होती है। क्योंकि अगर एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके हाथ में प्रिपरेशन करना है। अब आप उसमें सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, ये आपके हाथ में नहीं है। हाँ, प्रिपरेशन करना, अपने एफर्ट्स पर भरोसा रखना, अपना 100% देना आपके हाथ में बिल्कुल है, तो आपको इस पर फोकस करना चाहिए। लेकिन हम इस टेंशन में प्रिपरेशन करने वाला जो हमारा ब्रेन है उसको भी एग्जॉस्ट कर लेते हैं कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कितनी परसेंटेज आएगी, अगर उसकी मुझसे ज्यादा परसेंटेज आ गई तो, या ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। पर ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि जो अननेसेसरी चीजें हैं या जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, उन्हें हमें कहीं ना कहीं दिमाग से थोड़ा सा साइड करना ही पड़ेगा, ताकि हम अपनी बैटरी उन चीजों के लिए सेव कर पाएं जो एक्चुअली जरूरी है और जिन पर हम एक्चुअली मेहनत कर सकते हैं।

बड़ी एफएम रेनबो, आप हैं दीपिका के साथ। प्रोग्राम आप यहाँ पर सुन रहे हैं अल्फा जैन, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि क्यों जरूरत है कभी कभी दिमाग में भी एक ऐसे बटन की जहाँ पर हम वो हिस्ट्री डिलीट कर सकें जो एक्चुअल में हमें बस परेशान कर रही है। अब वीकेंड पर आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप खुद से ये पूछ सकते हैं कि पिछले हफ्ते की कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें मैं बार बार सोच रही हूँ, क्या मैं उन बातों को बदल सकती हूँ। अगर जवाब नहीं है तो शायद उस बात को सोचने की जरूरत भी नहीं है, और अगर जवाब हाँ है तो फिर आपको ये सोचना है कि आप क्या कर सकती हैं उन बातों को बदलने के लिए। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसे कैसे सुधार सकती हैं, या फिर कुछ भी ऐसा जिसे आप बदल सकती हैं। और तीसरा सवाल, अगले हफ्ते को बेहतर बनाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। तो बस ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखिए, क्योंकि जरूरी नहीं होता है कि हर प्रॉब्लम का सलूशन आपको आज ही मिले, हर सवाल का जवाब आज ही मिले, पर हाँ, हर पुरानी बात का बोझ कल तक ले जाना भी जरूरी नहीं है। इसीलिए इस वीकेंड थोड़ा कम सोचिए, थोड़ा ज्यादा मुस्कुराइए, फोन से कुछ दूरी बनाइए, अपने लोगों के साथ वक्त बिताइए, और अपने दिमाग से भी कहिए, भाई पिछले हफ्ते का काम हो गया, अब थोड़ा सा रेस्ट कर ले।

जी बिल्कुल, मेरी तो सभी के लिए यही विश है कि जिंदगी उतनी खूबसूरत हो जाए जितनी शायद सोचा भी ना हो। और जाते जाते एक बार फिर यही कहूंगी कि हर उस बात के लिए दिमाग को परेशान मत कीजिए जिन्हें बदलने के लिए आप कुछ खास नहीं कर सकते, और दिमाग को आराम दीजिए, वो चीजें कीजिए जिनसे आपका माइंड, आपका मन जो है उसे पीस मिले, और आप उसके बाद देखिएगा चीजें आप कितनी बेहतर ढंग से कर पाएंगे। फिलहाल के लिए यहाँ आपको इस प्रोग्राम में देनी होगी दीपिका को इजाजत। 5 बजे से आपके साथ जुड़ेंगी दीपांशी, लेकर आएंगी प्रोग्राम सिटी लाइट्स, शहर की हलचल से करवाएंगी आपको रूबरू। तो अभी के लिए दीपिका को इजाजत दीजिए। जाते जाते वही कहूंगी जो हर बार कहती हूँ, हम सभी यूं ही हंसते हंसाते गाते गुनगुनाते जिंदगी के हर एहसास को गले लगाते आने वाली खुशियों को सजाते और उम्मीदों से हाथ मिलाते रहेंगे, और दोबारा कभी सिर्फ यही मिलेंगे क्योंकि यही अपना ठिकाना है, हमें और कहाँ जाना है। आप सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो 102.6।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और

0: फिनाइल एफरीन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है कि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। सरकार ने कहा है कि ऐसी दवाओं के इस्तेमाल से 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम हो सकता है और इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी के सुकना में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ बैठक की। दार्जिलिंग के लोकसभा सांसद राजू बिस्ता ने कहा कि बैठक सफल रही और सभी गोरखा नेताओं ने रचनात्मक ढंग से अपने मुद्दे रखे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी संबंधित मुद्दों पर अपने विचार और प्रतिबद्धता व्यक्त की। बैठक के बाद गृहमंत्री ने घोषणा की कि मुद्दों के समाधान के लिए वार्ताकार पंकज सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज ब्रिक्स देशों के मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के निकट ऐतिहासिक थोटलकोंडा बौद्ध विरासत स्थल का दौरा किया। ये दौरा भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत विशाखापट्टनम में आयोजित कार्यक्रमों का हिस्सा है। इसमें 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ब्रिक्स देशों के युवा मंत्रियों की बैठक आज शाम विशाखापट्टनम में होगी। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक कल विशाखापट्टनम में होगी। बैठक में खेल के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि समय पर फैसले देने वाली न्याय व्यवस्था वैश्विक विश्वास बढ़ाती है, कारोबार सुगमता को मजबूत करती है और किसी देश को निवेश तथा आर्थिक विकास के लिए अधिक भरोसेमंद बनाती है। नई दिल्ली में 11वें ब्रिक्स लीगल फोरम को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि मजबूत संस्थान, विशेष रूप से प्रभावी न्याय व्यवस्था आर्थिक विकास की आधारशिला है। सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह पहल के अंतर्गत आयोजित 3 दिन की विशेष लोक अदालत के पहले दिन 400 से अधिक मामलों का निपटारा किया। इनमें वैवाहिक और संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से संबंधित मामले, कर विवाद और सेवा तथा श्रम संबंधी मामले शामिल है। न्यायालय ने कहा कि ये पहल न्याय व्यवस्था के मध्यस्थता और विवाद समाधान के अन्य सहमतिपूर्ण तरीकों को बढ़ावा देने के उसके निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। पहला जहाज एमटी सिबू 20 अगस्त को यमन के तट के पास अदन की खाड़ी में अगवा किया गया। दूसरा जहाज एमवी लुत्फ 17 अगस्त को सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास अगवा किया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत अशांत समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है।
1: 2 ships which are foreign flag. 2 जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं। उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है।
0: अमेरिका ने 20 अरब डॉलर मूल्य के कैनेडाई उत्पादों पर 50% टैरिफ लगा दिया है। ये टैरिफ आज तड़के लागू हो गए। कैनेडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि कैनेडा भी डॉलर के बदले डॉलर के आधार पर समान टैरिफ लगाएगा। भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम के प्रति जागरूकता फैलाने और इसके गायन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। नई दिल्ली में आज पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये निर्णय पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों की पहली बैठक में लिया गया। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। ये मैच एम्स्टरडेम में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान पर 5-3 की शानदार जीत के साथ भारत ने पूल डी में दूसरा स्थान हासिल किया। उधर BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज महिला डबल्स के सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू शेंगशू और टैनिंग से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Union Home Minister Amit Shah held an important meeting with senior

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। প্ৰিয় শ্ৰোতা, খন্তেক পাছতে ক্ৰমে হিন্দী আৰু ইংৰাজীত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই জয়া ভাৰতী। गृह मंत्री अमित शाह ने आज देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। इसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकननी की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया और प्रस्तावित त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड की रूपरेखा तैयार करने पर चर्चा हुई। सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरामिन मैलेट और

0: नाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने कहा है कि ऐसी दवाओं के इस्तेमाल से 4 वर्ष की कम उम्र के बच्चों को जोखिम हो सकता है और इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज ब्रिक्स देशों के मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के निकट ऐतिहासिक थोटलकोंडा बौद्ध विरासत स्थल का दौरा किया। यह दौरा भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत विशाखापट्टनम में आयोजित कार्यक्रमों का हिस्सा है। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक कल विशाखापट्टनम में होगी। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। पहला जहाज एमटी सीबू 20 अगस्त को यमन के तट के पास अदन की खाड़ी में अगवा किया गया। दूसरा जहाज एमवी लुत्फ 17 अगस्त को सोमालिया के पुटलैंड तट के पास अगवा किया गया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत अशांत समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के पहले कैथोलिक संघीय मंत्री और धार्मिक स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक शहबाज भट्टी की हत्या के 15 साल बाद भी ईसाई, हिंदू और अहमदिया सहित अल्पसंख्यक समुदाय देश भर में भेदभाव और धार्मिक स्थलों पर हमलों का सामना कर रहे हैं। अमरीकी मीडिया संस्थान पीजे मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार अत्याचारों में अपहरण, जबरन धर्मांतरण और बाल विवाह शामिल हैं। रिपोर्ट में इश्निंदा कानूनों के दुरुपयोग का भी उल्लेख है। भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम के प्रति जागरूकता फैलाने और इसके गायन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। नई दिल्ली में आज पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि यह निर्णय पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों की पहली बैठक में लिया गया। प्रवक्ता ने कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में कथित तौर पर 2 श्लोकों के बाद राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पाठ रोकने का आरोप लगाते हुए इसकी कड़ी आलोचना की।
1: आज इस प्रस्ताव में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी की बैठक में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिए कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता देश के प्रत्येक गली नुक्कड़ कोने में जाकर वंदे मातरम का यशोगान करेगा। वंदे मातरम के विषय में लोगों को हम बताएंगे। वंदे मातरम को लेकर जिस प्रकार की कुल्छित राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है उसको लेकर हम आंदोलन खड़ा करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य जनसेवा के प्रति श्री मोदी की प्रतिबद्धता को उजागर करना और लोगों, विशेषकर युवाओं को सेवा कार्यों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। उन्होंने ब्लॉक स्तर पर 15 दिन के सेवा सेतु अभियान की भी घोषणा की। और खेलों में बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में के सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू शेंग शू और टैन निंग से जारी है। महिला डबल्स के पहले गेम में भारतीय जोड़ी ने अपने नाम किया है। यह मुकाबला नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला जा रहा है। वहीं FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। ये मैच अम्स्टरफेन में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Union Home Minister Amit Shah held an important meeting with senior Gurkha leaders today at a resort in Sukna, Siliguri. After the meeting, the Home Minister announced that a high-level committee to resolve the issues would be formed under the chairmanship of interlocutor Pankaj Singh, former BSF Director and Deputy National Security Advisor. Briefing the media after the meeting, Darjeeling Lok Sabha MP Raju Bista said the meeting was very fruitful and all the Gurkha leaders constructively presented their issues. After hearing the leaders, the Chief Minister Shubhendu Adhikari also expressed his views and commitment regarding concerned issues.

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ প্ৰিয় শ্ৰোতা, খন্তেক পাছতেই সংস্কৃতত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: ইয়াম আকাশবাণী, সম্প্রতি বার্তাঃ শ্রূয়ন্তাম, প্রবাচিকা সুষমা কুমারী। आदौ मुख्य वार्ताः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः सिलिगुड़ी नगरे वरिष्ठैः गोरखा नेतृभिः सह मेलनम् अकरोत्। वार्ताकारस्य पंकज सिंहस्य अध्यक्षतायां समाह्वानानां समाधानाय उच्चस्तरीय समित्याः घोषणा अपि जाता। सर्वकारेण चतुर्वर्षेभ्यः न्यून बालकानां कृते क्लोरफेनिरामीन मेलिएट तथा फिनाइले फ्राइन हाइड्रोक्लोराइड इत्येतैः युक्तानां सर्वाणि निश्चित मात्रा संयोजनानि निर्माणे विक्रयणे वितरणे च प्रतिबन्धं स्थापितम्।

0: अद्य सायंकाले आन्ध्रप्रदेशस्य विशाखापत्तनम नगरे ब्रिक्स युवा मन्त्रिणां सभा आरभ्यते। भारतः सोमालिया देशेन सह द्वाविंशतिः भारतीय नाविकैः सह विदेशीय ध्वजयुक्तयोः वाणिज्यिक नौकायानयोः अपहरणस्य विषये चर्चां करोति। अपि च बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्वस्पर्धायां भारतीय महिला डबल्स युग्मस्य त्रिसा जाली गायत्री गोपीचन्दयोः तथा चीनदेशस्य लियू शेंगशू टेन निंग इत्येतयोः मध्ये उपान्त्यचक्रीय स्पर्धा सम्प्रति नवदिल्ल्यां प्रचलति। पश्चिम बंगस्य पर्वतीय क्षेत्राणां सर्वैः पक्षधारकैः सह केन्द्रीय मन्त्रिणा अमितशाहेन सिलिगुड़ी नगरे उपवेशनम् एकं कृतम्। अद्य विषये अस्मिन् निर्णयो अयं जातः यत् तत्रत्य पर्वतीय क्षेत्राणां समाहवानानां स्थायीय समाधानार्थं पूर्व आईपीएस अधिकारिणः पंकज सिंहस्य नेतृत्वे एकस्याः मध्यस्थ समित्याः संरचना जाता। समितिरियं केन्द्रीय कार्यालयं प्रति प्रतिवेदनं प्रेषयिष्यति। सिलिगुड़ी नगरस्य सुकार क्षेत्रे अनुष्ठिते अस्मिन् उपवेशने पश्चिम बंगस्य विपक्षिनेतारः सुवेन्दु अधिकारी अन्ये च गणमान्य जनाः उपस्थिताः आसन्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना प्रोक्तं यत् भारतदेशेन लाइसेंस राज इत्यस्य कालावधौ उत्पादन दण्डितकरणस्य स्वीय दृष्टिकोणे आधारभूत परिवर्तनं विहितमस्ति। साम्प्रतं तत्स्थाने प्राशासनिक प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव आईएलपीआई इत्यनया योजनया माध्यमेन पुरस्कृतः क्रियते। प्रवर्तमान वर्षीय इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम इत्यस्मात् मंचात् संबोधने प्रधानमंत्री प्रोक्तवान् यत् पुरातनी पद्धति सांप्रतिकी पद्धतितः भिन्ना वर्तते। प्रधानमंत्रिणा पीएलआई योजनायाः सफलता अपि चर्चिता यत्र सार्ध द्विलक्ष कोटि रूप्यकाणां निवेशः जातः। द्वाविंशति लक्ष कोटि रूप्यकाणां उत्पादनं क्रयणं पंचदश लक्ष रूप्यकाणां निर्यातः अपि जातः। चतुर्दश लक्षाधिकानि वृत्त्यवसराणि अपि सृजितानि।
1: जहां पहले प्रोडक्शन बढ़ाने पर पनिशमेंट मिलता था, वहीं आज हमारी सरकार प्रोडक्शन बढ़ाने पर इंसेंटिव दे रही है। पीएलआई स्कीम की सक्सेस दुनिया देख रही है। सिर्फ इस एक योजना की वजह से करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुआ है। 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोडक्शन और सेल्स हुई है। 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है और 14 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब बनी है।
0: श्री मोदी भारत देशः अंतर्राष्ट्रीय समुदायस्य आशा विकासस्य च उज्ज्वल स्थानं विद्यते इति अपि प्रतिपादितवान्।
1: दुनिया में ग्रोथ को लेकर के कई तरह की चिंताएं हैं। दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा है, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा है। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
0: सर्वकारेण अद्य क्लोर फिनिरामाइन मेलिएट फिनाइले फ्राइन हाइड्रोक्लोराइड इत्येतयोः घटनानां युक्तानां सर्वासां नियत मात्रा संयोजन औषधीनां निर्माणे विक्रयणे वितरणे च प्रतिबन्धाः सन्ति। स्वास्थ्य मन्त्रालयेन एका अधिसूचना प्रदर्शिता यस्यां चतुर्वर्षेभ्यः येषु बालेषु एतासां औषधीनां प्रयोगः न करणीयः इति अपि स्पष्टं कृतम्। बालकानां स्वास्थ्य सुरक्षायाः विषये एषः महत्वपूर्णः निर्णयः विद्यते। प्रशासनेन इदम् अपि कथितं यत् एतादृशानां संयोजनानां प्रयोगः बालकेषु हानिकारकः भवितुम् अर्हति। युवा कार्य क्रीड़ा मंत्रालय से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ब्रिक्स देशानां मंत्रिभिः वरिष्ठ नेतृभिश्च साकम् अद्य

0: उपलब्ध हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज ब्रिक्स देशों के मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के निकट ऐतिहासिक थोटलकोंडा बौद्ध विरासत स्थल का दौरा किया। ये दौरा भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत विशाखापट्टनम में आयोजित कार्यक्रमों का हिस्सा है। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की कल विशाखापट्टनम में बैठक होगी। भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम के प्रति जागरूकता फैलाने और इसके गायन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। नई दिल्ली में आज पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये निर्णय पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों की पहली बैठक में लिया गया। प्रवक्ता ने कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में कथित तौर पर दो श्लोकों के बाद राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पाठ रोकने का आरोप लगाते हुए कड़ी आलोचना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देशभर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। उन्होंने ब्लॉक स्तर पर 15 दिन के सेवा सेतु अभियान की भी घोषणा की।
1: सेवा सेतु अभियान के तहत 15 दिन के लिए ब्लॉक लेवल पर हर योजना के संबंधित डिपार्टमेंट के आवश्यक कागजात को लेकर वहां लोग उपस्थित रहे, तो आप वहां आइए, फॉर्म भरिए, आपका नाम आयुष्मान में ऐड हो जाएगा। ऐसे सरकार के अलग अलग भिन्न भिन्न जो योजनाएं हैं जिसका लाभ सभी लोगों तक पहुंचना है, तो उनको ये मौका होगा कि उनके ब्लॉक स्तर पर सेवा सेतु अभियान का एक अपना अलग कार्यक्रम उस दरमियान होगा, उसमें वो इस मौके का लाभ लेते हुए अपने आप को इस योजना में जोड़ सकते हैं।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह पहल के अंतर्गत आयोजित 3 दिन की विशेष लोक अदालत के पहले दिन 400 से अधिक मामलों का निपटारा किया। इनमें वैवाहिक और संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से संबंधित मामले, कर विवाद और सेवा तथा श्रम संबंधी मामले शामिल हैं। न्यायालय ने कहा कि ये पहल न्याय व्यवस्था में मध्यस्थता और विवाद समाधान के अन्य सहमतिपूर्ण तरीकों को बढ़ावा देने के उसके निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। ब्रिटेन के 70 से अधिक सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश को पत्र लिखकर पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। सांसदों ने पाकिस्तानी सेना के अत्याचार को रोकने और नागरिकों के जीवन की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। ये अपील POJK में पाकिस्तानी सेना की क्रूर कार्रवाई में सैकड़ों लोगों की मौत की खबर के बाद आई है। क्षेत्र में सख्त नाकाबंदी है और संचार बंद है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद को चीन की ली यू शेंगशु और टैन निंग से हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

তাৰপিছত ধাত আমি দুবাৰ তিনিবাৰ টুকুৰিয়ালো

0: 와. 라바구라 가와레.
1: 아, 아니 해줘?
0: 예.
1: 잘만해? 아르바구라?

0: ভজনীয় অনুষ্ঠানটির ইমানতে অন্ত পৰিল। ইয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া 8:45 পৰা সমাচাৰ সন্ধ্যা, 9:00 নিউজ@9 আৰু 9:15 পৰা স্পটলাইট দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों से बातचीत की, संगठन को मजबूत करने और जनता से गहरे जुड़ाव पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद केंद्र ने गोरखा मुद्दे से समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत बांग्लादेश के संबंध आपसी हितों पर आधारित होने चाहिए। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करने के लिए 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। ब्रिक्स युवा मंत्रियों ने शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार और सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के लिए संयुक्त वक्तव्य अपनाया। उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने दबाव से तेज वर्षा की संभावना, बाढ़ प्रभावित जिलों में स्थिति गंभीर। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के अलावा बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और महासचिव सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इसके जुड़ाव को बढ़ाना है। इससे पहले दिन में पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक

0: की श्री नवीन ने कहा कि भाजपा टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए पार्टी के आधार को और व्यापक बनाने के लिए पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इसका उद्देश्य जनसेवा के प्रति श्री मोदी की प्रतिबद्धता को उजागर करना है। श्री तावड़े ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
1: ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और जिस सेवा भाव से काम करने वाली वहां हमारी माता बहन है उनका सम्मान स्वाभाविकता किया जाएगा।
0: श्री तावड़े ने ब्लॉक स्तर पर 15 दिन के सेवा सेतु अभियान की भी घोषणा की।
1: सेवा सेतु अभियान के तहत 15 दिन के लिए ब्लॉक लेवल पर हर योजना के संबंधित डिपार्टमेंट के आवश्यक कागजात को लेकर वहां लोग उपस्थित रहे तो आप वहां आइए, फॉर्म भरिए, आपका नाम आयुष्मान में ऐड हो जाएगा। ऐसे सरकार के अलग अलग भिन्न भिन्न जो योजनाएं हैं जिसका लाभ सभी लोगों तक पहुंचना है तो उनको ये मौका होगा कि उनके ब्लॉक स्तर पर सेवा सेतु अभियान का एक अपना अलग कार्यक्रम उस दरमियान होगा, उसमें वो इस मौके का लाभ लेते हुए अपने आप को इस योजना में जोड़ सकते हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक बैठक कर देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इनमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। एक रिपोर्ट।
2: श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया। प्रस्तावित त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड की रूपरेखा तैयार करने पर भी चर्चा हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने सुकना में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ भी बैठक की। दार्जिलिंग के लोकसभा सांसद राजू बिस्ता ने कहा कि बैठक बेहद सफल रही और सभी गोरखा नेताओं ने अपने मुद्दे रखे। बैठक के बाद गृह मंत्री ने घोषणा की कि मुद्दों के समाधान के लिए वार्ताकार पंकज सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बांग्लादेश संबंध आपसी सम्मान पर आधारित होने चाहिए। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसी भी रिश्ते को सफल होने के लिए आपसी हितों की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक है। भारत बांग्लादेश के साथ हितों की समानता और पारस्परिक सहयोग पर आधारित सकारात्मक, रचनात्मक और प्रगतिशील संबंध चाहता है। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को विश्व का एक अनूठा देश बताया क्योंकि कोई अन्य राष्ट्र अपने पड़ोसी पर हमला करने और दबाव डालने के लिए आतंकवाद का इतने व्यवस्थित और निरंतर तरीके से उपयोग नहीं करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक ब्रिक्स युवा मंत्रियों के संयुक्त वक्तव्य को अपनाने के साथ संपन्न हुई। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच युवा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई और शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार तथा सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के तरीकों पर चर्चा की गई। एक रिपोर्ट।
3: संयुक्त वक्तव्य में शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल, युवा उद्यमिता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और खेल, पर्यावरण और सतत विकास, सामाजिक और सांस्कृतिक भागीदारी, स्वयं सेवा, गरीबी उन्मूलन, अंतर धार्मिक संवाद और युवा समावेशन सहित प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि युवाओं को भविष्य को आकार देने में भागीदार होना चाहिए। बैठक में निर्णय लेने की प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी के लिए अनुकूल वातावरण बनाने, युवा नेतृत्व वाली पहलों को मजबूत करने, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ाने

0: कार्यकर्ता और सामाजिक उद्यमी के रूप में विकसित होने का आग्रह किया। डॉक्टर सावंत ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश, बुनियादी ढांचे और रोजगार के क्षेत्र में की जा रही विकास पहलों की भी सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक तकनीक के साथ एकीकृत करने पर बल दिया है। नोएडा में एक लैब का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह शहरों की संख्या बढ़ रही है, उसी के अनुरूप देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विस्तार होना चाहिए। श्री सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश में चिकित्सा सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आधुनिक मेडिकल इमेजिंग, डीएनए जांच, जीनोमिक्स, डिजिटल पैथोलॉजी और डेटा आधारित स्वास्थ्य सेवाएं बीमारियों की जांच और उपचार के तरीकों को तेजी से बदल रही है। उन्होंने बताया कि सरकार सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं में भी नई तकनीक को शामिल कर रही है।
1: जैसे जैसे हमारे शहर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाना ही होगा। हमारा लक्ष्य केवल बीमारी के सामने आने के बाद ट्रीटमेंट तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। फ्यूचर के हेल्थ केयर सिस्टम को प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन, रिस्क एसेसमेंट और पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर पर अधिक ध्यान देना होगा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह पहल के अंतर्गत आयोजित 3 दिन की विशेष लोक अदालत के पहले 400 दिन से अधिक मामलों का निपटारा किया। इनमें वैवाहिक और संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से संबंधित मामले, कर विवाद और सेवा तथा श्रम संबंधी मामले शामिल हैं। न्यायालय ने कहा कि यह पहल न्याय व्यवस्था में मध्यस्थता और विवाद समाधान के अन्य सहमतिपूर्ण तरीकों को बढ़ावा देने के लिए उसके निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। मेघालय और असम सरकार के बीच आज गुवाहाटी में संयुक्त बैठक हुई। इसमें 19 अगस्त को शिलांग में असम में पंजीकृत वाहनों में तोड़फोड़ की घटना के बाद स्थिति पर चर्चा की गई। मेघालय के उप मुख्यमंत्री डॉ असुनिया भालंगधार और असम सरकार में सीमा संरक्षण, असम समझौता कार्यान्वयन और विकास मंत्री अतुल बोरा ने गुवाहाटी में कोयनाधार स्टेट गेस्ट हाउस में दोनों राज्यों की सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की। त्रिपुरा में नीति आयोग के सदस्य डॉ जोरम अनिया ने आज गोमती जिले के अथारो भोला में गरिया अकादमी मॉडल स्कूल का दौरा किया। दौरे के दौरान स्कूल की शिक्षा व्यवस्था, बुनियादी ढांचे, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा हुई। डॉ अनिया ने जमातिया होडा समुदाय की संस्कृति, परंपराओं और विरासत के बारे में भी जानकारी ली। महाराष्ट्र और जर्मनी के हेसे राज्य ने निवेश, उद्योग, नवाचार, रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुंबई में आज सह्याद्री अतिथि गृह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हेसे के मंत्री बोरिस राइन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन के अंतर्गत दवा, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, वित्तीय सेवाएं, लॉजिस्टिक्स सेवा, डिजिटल अर्थव्यवस्था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट पीजी परीक्षा के लिए चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती के कारण सीजीएचएस वेलनेस सेंटर को 27 से 31 अगस्त तक बंद रखने का नोटिस का खंडन किया है। मंत्रालय ने कहा कि यह नोटिस झूठा है और अनाधिकृत है। सभी सीजीएचएस वेलनेस सेंटर अपने निर्धारित कार्य समय के अनुसार कार्य करेंगे। मंत्रालय ने लाभार्थियों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक सीजीएचएस चैनलों के माध्यम से जारी की गई जानकारी पर ही भरोसा करें। सरकार ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें एक निवेश योजना का प्रचार किया जा रहा है। इस वीडियो में 22,000 रुपए के शुरुआती निवेश पर हर सप्ताह 5.5 लाख रुपए की सुनिश्चित आय देने का दावा किया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि यह वीडियो फर्जी है और एआई से तैयार किया गया है। इकाई ने स्पष्ट किया कि वित्त मंत्री ने ऐसी किसी निवेश योजना या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। जांच इकाई ने लोगों से ऐसे जालसाजों से सावधान रहने की अपील की है जो फर्जी योजनाओं का लालच देकर लोगों को ठगने और उनका पैसा हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में ओडिशा में बारिश की संभावना व्यक्त की है। इससे बाढ़ प्रभावित इलाकों में चिंता बढ़ गई है। हमारे

0: संवाददाता ने बताया कि कई इलाकों में अब भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है।
1: उड़ीसा में एक बार फिर बारिश होने की संभावना है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बने नए मौसम से बारिश बढ़ने की उम्मीद है। आईएमडी भुवनेश्वर ने कई जिलों में हल्के से मध्यम बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान लगाया है और ये बारिश का दौर आने वाले हफ्ते तक जारी रहने की संभावना है। आज केंदुझर, मयूरभंज, कालाहांडी और नवरंगपुर के लिए भारी बारिश की येलो वार्निंग जारी की गई है, जबकि 24 और 25 तारीख को केंदुझर और मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग का अनुमान है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद को चीन की लियू शेंग शू और टैन निंग से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। और FIH हॉकी पुरुष विश्व कप में भारत का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड ने 1-0 की बढ़त बना ली है। पहले राउंड के 3 मैचों में भारतीय टीम ने 2 जीत और 1 हार के साथ दूसरे राउंड में जगह बनाई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों से बातचीत की। संगठन को मजबूत करने और जनता से गहरे जुड़ाव पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद केंद्र ने गोरखा मुद्दे के समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत बांग्लादेश के संबंध आपसी हितों पर आधारित होने चाहिए। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करने के लिए 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi interacts with office bearers of the BJP in New Delhi, stresses on strengthening organization and deepening connect with the people. Centre announces high-level committee to resolve Gorkha issue after Home Minister holds high-level meeting with senior Gorkha leaders in Siliguri. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says India-Bangladesh ties have to be based on mutual interests. BJP to launch month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan to mark Prime Minister Modi's birthday to highlight his commitment to public service. BRICS youth ministers adopt joint statement to expand opportunities for young people in education, skills, entrepreneurship, innovation and social development. In Odisha, fresh weather system over Bay of Bengal to enhance rainfall activity, raising concerns for flood-hit districts. And in BWF Badminton World Championships, Indian women's doubles pair of Trisha Jolly and Gayatri Gopichand clinches historic bronze medal. Prime Minister Narendra Modi held a meeting with the newly appointed national office bearers of the BJP at the party headquarters in New Delhi this evening. Besides BJP President Nitin Naveen, the meeting was attended by the party's national vice presidents and general secretaries, among others. The Prime Minister said in a social media post that organizational meetings are all about new ideas and perspectives aimed at strengthening the party and deepening connect with the people. He said it was a great interaction with fellow party colleagues and the new organizational team. Earlier, BJP National President Nitin Naveen held a meeting with the newly appointed national office bearers. The BJP president said the BJP team is committed to working with full dedication and devotion for expanding the base of the party to realize the resolve of Prime Minister Narendra Modi to make India a developed nation. Mr. Nitin Naveen informed that during the meeting, the BJP also passed a resolution regarding the honour and protection of the historical legacy of Vande Mataram. In the resolution, the party has condemned and unequivocally opposed the decision taken by the Congress Working Committee on the 19th of this month to reaffirm its 1937 resolution restricting the singing of Vande Mataram to its first two stanzas.